FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है विचार बिंदु।

0: आज इस कार्यक्रम में सुनिए खलील जिब्रान के विचार।
1: अभी कल ही मैं मंदिर के द्वार पर खड़ा था और पास से जाने वाले सभी व्यक्तियों से प्रेम के रहस्यों और लाभों के बारे में पूछ रहा था। एक अधेड़ आयु का व्यक्ति वहां से गुजरा। उसकी शक्ति क्षीण हो चली थी और उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। वो कहने लगा, प्रेम एक जन्मजात दुर्बलता है जिसे हमने आदि पुरुष से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। फिर एक नवयुवक जिसका शरीर और भुजाएं सुदृढ़ थी ये कहते हुए आया, प्रेम एक ऐसा दृढ़ निश्चय है जो हमारी आत्मा के साथ रहता है और जो वर्तमान को अतीत तथा भावी युगों से जोड़ता है। उसके पीछे एक शोकातुर स्त्री आहें भरती हुई गुजरी और कहने लगी, प्रेम वो घातक विष है जिसे भयंकर और काले काले भुच्चर पाताल की गहराइयों में से सारे लोक में फैलाते हैं, जिससे वो विष ऊस कणों के रूप में प्यासी आत्माओं के ऊपर पड़ता है। कुछ समय के लिए आत्मा उसके प्रभाव से नशे में मस्त हो जाती है और फिर वो कुछ देर संभल कर सदा के लिए नष्ट हो जाती है। पर एक फूल के समान गुलाबी चेहरे वाली सुंदर लड़की अपने मुस्कुराते हुए ओठों से कहने लगी, देखो प्रेम अमृत है जिसे प्रभात की बधुएं बलवान पुरुषों के लिए बरसाती हैं, जिससे वे रात में आभायुक्त बन उठें और दिन में आनंद का भोग करें। उसके बाद एक और आदमी काले वस्त्र पहने हुए आया। उसकी लंबी दाढ़ी उसकी छाती पर बिखरी हुई थी। उसने बड़ी तीव्रता के साथ कहा, प्रेम एक मूर्खता है जो जवानी के प्रभात के साथ साथ प्रकट होती है और उसके संध्याकाल के साथ विदा हो जाती है। उसके पीछे एक और आदमी आया जिसका चेहरा तेजपूर्ण और शांत था। उसने बड़े प्रसन्न मुख से कहा, प्रेम एक दैवी ज्ञान है जो हमारे अंतरंग और बाहर की आंखों को प्रकाश प्रदान करता है, जिससे हम समस्त वस्तुओं को दीपकों के समान देखने लग जाएं। फिर एक अंधा आदमी धरती पर पुरानी लाठी से अपना मार्ग ढूंढता हुआ आया। वो रोती हुई आवाज में कहने लगा, प्रेम एक गहरी धुंध है जो आत्मा को ढक देती है और जीवन के दृश्यों पर पर्दा डाल देती है, जिससे वो आत्मा पथरीली चट्टानों में भटककर अपनी इच्छाओं की प्रतिच्छाया के सिवा कुछ भी नहीं देखती और सूनी तथा निर्जन घाटियों में अपनी आवाज की प्रतिध्वनि के सिवा कुछ नहीं सुनती। फिर एक नवयुवक वीणा बजाता और ये गाता हुआ आया, प्रेम एक स्वर्गीय ज्योति है जो सूक्ष्म ग्राही आत्मा के अंतरंग से चमक कर अपने आसपास की समस्त वस्तुओं को प्रकाशमान कर देती है, जिससे ये आत्मा समस्त लोकों का दृश्य इस प्रकार देखे मानो उसके सामने हरे भरे मैदानों में एक जुलूस जा रहा है। इस नवयुवक के बाद एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता और कांपता हुआ कहने लगा, प्रेम एक दुखी शरीर की वो विश्रांति है जो उसे कब्र में प्राप्त होती है और आत्मा का वो आश्रय है जो उसे अनंत की तीव्रता में मिलता है। फिर 5 वर्ष का एक बालक आया और उसने तेजी से दौड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, प्रेम मेरा बाप है और प्रेम मेरी माँ है और मेरे माँ बाप के सिवा कोई नहीं जानता कि प्रेम क्या है। और अब दिन समाप्त हो चुका था और सब लोग मंदिर के सामने से गुजर चुके थे। इनमें से हर एक ने प्रेम के संबंध में कुछ न कुछ कहा था और प्रत्येक शब्द में अपनी अपनी भावनाओं और इच्छाओं को प्रकट किया था।
0: अभी आपने खलील जिब्रान के विचार सुने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अप्रातकालीन इस बेला में प्रभु वंदन के साथ शुभारंभ करें आज की आराधना। कार्यक्रम के शुभारंभ में सुनिए माखन चोर चित चोर और हम सब के प्यारे मोहन की भजन को।

उदित नारायण के गाए इस भजन को सुनकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं कान्हा सामने खड़े होकर मुरली बजा रही हूँ और हम सब मधुबन पहुँच गए हों। श्रोताओं, यदि आप भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर श्री राम नाम रूपी मणि दीपक को रखिए। आपका दिन शुभ हो जाएगा। प्रभु का स्मरण करते रहे, इससे न केवल आध्यात्मिक बल मिलता है बल्कि

इस रूहानी सफर में जो गीत अब हम सुनाने जा रहे हैं, उसके शब्द सीधे दिल पर दस्तक देते हैं। कबीर की परंपरा से निकले ये बोल कहते हैं, ना मैं धर्मी ना मैं अधर्मी। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति किसी दिखावे का नाम नहीं है, न ये मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों तक सीमित है, न ही ये केवल विशेष वस्त्र पहनने से मिलती है। सच्ची भक्ति तो बस प्रेम है, सादगी है और खुद को जानने की एक प्रक्रिया है।

हरी सौ मीत न और को। सच ही तो है, दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ और उस परम पिता से रिश्ता एक तरफ। सांसारिक मित्रता में शायद कभी स्वार्थ आ जाए, लेकिन हरि की मित्रता तो निस्वार्थ है, जो अंत समय तक साथ निभाती है। जब इंसान को वो परम मित्र मिल जाता है तो फिर उसे दुनिया की चमक दमक फीकी लगने लगती है। फिर उसे राजसी ठाट पाट में वो सुख नहीं मिलता जो फकीरी और सादगी में मिलता है, क्योंकि जब मन उस मालिक से लग जाए तो फिर मन कहीं और रमता ही नहीं। इन्हीं भाव को शब्दों में पिरोया है इस भजन ने।

जहां न कोई पराया है न कोई दूसरा, जहां हम खुद को खोकर सबको पा लेते हैं, जब कणकण में, जड़ चेतन में और हम सब में वही एक नूर, वही एक ईश्वर नजर आने लगे, तो समझिए कि बंदगी पूरी हुई। चाहे वो हिमालय की ये बर्फीलियाँ चोटियाँ हों या कलकल बहती नदियाँ, हर जगह वही ब्रह्म व्याप्त है। आइए इसी पूर्णता के भाव के साथ सुनते हैं समापन में ये भजन।

उदित नारायण, लता मंगेशकर, रूप कुमार राठौर, अनुपमा देशपांडे और अनूप जलोटा के गाए भजन आज आपने इस कार्यक्रम में सुने। इसी के साथ हमारी आज की आराधना अब यहीं पर संपन्न हुई। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रही हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आज की बात। देश दुनिया के इतिहास में आज यानी 9 मई के दिन घटित महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, जो प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के लिए एक सामुदायिक विज्ञान यानी नागरिक विज्ञान की भूमिका पर जोर देता है। यह अभियान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समन्वित पक्षियों के आवासों की रक्षा के लिए साल में 2 बार वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। इस साल ये 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल की थीम है हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है, यानी एवरी बर्ड मैटर्स, योर ऑब्जर्वेशन मैटर। इस दिन का उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के डेटा एकत्र करने, उनके प्रवास पैटर्न और संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। साथ ही यह दिन याद दिलाता है कि प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी आबादी को बचाना जरूरी है। और श्रोताओं, आज के दिन मेवाड़ के महान सिसोदिया राजवंश के 13वें शासक महाराणा प्रताप की जन्मतिथि है, जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मुख्य नाम जो अद्वितीय संसदविद और राष्ट्र सेवी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी भी आज जन्मतिथि है। असाधारण बुद्धि, उत्कृष्ट वक्ता और सच्चे राष्ट्रवादी गोखले ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी। 9 मई सन 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे गोखले आम आदमी के सच्चे हिमायती थे और उनका जीवन निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और दृढ़ता के गुणों का जीता जागता उदाहरण है।

और अब बात हिंदी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, जाने माने निबंधकार और रेखा चित्रकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। सहारनपुर के देवबंद में जन्मी प्रभाकर जी ने ज्ञानोदय और नया जीवन जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया, साथ ही जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना जैसी कृतियों से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने अपना जीवन देश सेवा और साहित्य को समर्पित कर दिया। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कहें तो इन्हें शैलियों का शैलीकार कहा जाता है। और श्रोताओं, आज ही के दिन शहंशाह गजल के नाम से मशहूर हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के पार्श्व गायक और अभिनेता तलत महमूद की पुण्यतिथि है, जिन्होंने गजल गायकी को हिंदी सिनेमा में लोकप्रिय बनाया। आज की बात में बस इतना ही। अब विभू कृष्णा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है विविधा। इस अंक के साथ मैं हूं विभू कृष्णा। लोक संस्कृति के संरक्षण में आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र की भूमिका, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी अल्मोड़ा, जिसे पहाड़ की आवाज के रूप में जाना जाता है, केवल एक प्रसारण केंद्र नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस हिमालयी क्षेत्र में लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में इसकी भूमिका अद्वितीय है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र ने कुमावनी लोक संगीत की उन विधाओं को जीवित रखा जो लुप्त होने की कगार पर थी। झोड़ा, चांचरी, छपेली, भगनौल और न्योली जैसे पारंपरिक लोकगीतों को आकाशवाणी ने न केवल रिकॉर्ड किया बल्कि उन्हें घर घर पहुंचाया। हीरा सिंह राणा, कबूतरी देवी और गोपाल बाबू गोस्वामी जैसे दिग्गज कलाकारों की आवाज को आकाशवाणी ने ही जन जन तक पहुंचाया। आज भी यहाँ का आर्काइव लोक संगीत का सबसे बड़ा खजाना है। जब आधुनिकता के दौर में नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा से दूर हो रही है, तब आकाशवाणी अल्मोड़ा ने कुमावनी बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित कर भाषा के प्रति गर्व का भाव पैदा किया। आकाशवाणी अल्मोड़ा सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि कुमाऊं के लोक संस्कृति का अभिलेखागार और संरक्षक है। अगर ढोल, दमाऊं, जागर, हुड़किया बॉल जैसी विधाएं आज भी जीवित हैं, तो इसमें रेडियो के निरंतर प्रसारण और दस्तावेजीकरण का बड़ा योगदान है। 1986, वो साल जब पहाड़ों में पहली बार आकाशवाणी अल्मोड़ा की आवाज़ गूंजी थी। उस वक्त न मोबाइल थे न इंटरनेट, गांव-गांव में लोग रेडियो के आसपास इकट्ठा होते और इसे जी भर सुनते। आज 2026, 40 साल बाद भी वही आवाज कुमाऊं की मिट्टी, बोली और लोक संस्कृति को सहेजे हुए है। 90 के दशक से 2010 तक आकाशवाणी ने संगीत सभा, लोक मंजरी, उत्तराखंड के लोकगीत, शैलस्वर, बुरांश, उत्तरायण जैसे कई कार्यक्रमों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को जोड़ा। छपेली की थाप, हुड़किया बॉल की धुन, हुड़के की गूंज और मशक बीम की तान, ये सब रेडियो के जरिए संरक्षित हुई। जब टीवी इंटरनेट नहीं पहुंचा, तब आकाशवाणी ने पहाड़ की हर गली नुक्कड़ तक इस संस्कृति को पहुंचाया। 2020 के बाद डिजिटल युग आया, FM, ऐप और YouTube, लेकिन आकाशवाणी अल्मोड़ा ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। अब भी हर सुबह कुमावनी लोकगीत, हर शाम जागर और हर त्योहार पर विशेष प्रसारण। 1986 से 2026 तक के ये सिर्फ 40 साल नहीं, 40 साल की धुने हैं, 40 साल की बेमिसाल कहानियां। आकाशवाणी अल्मोड़ा ने पहाड़ को उसकी पहचान लौटाई, लोक कलाकारों को सम्मान दिया और आने वाली पीढ़ी को जड़ों से जोड़े रखा। क्योंकि जब तक रेडियो पर ढोल दमाऊं बजेगा, कुमाऊं की संस्कृति जिंदा रहेगी। और इसको आगे बढ़ाने का काम आज के हमारे युवा कलाकार कर रहे हैं। तो आज विविधा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा
कीजिए।

0: समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलम् गुजरात टाइटन्स दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर

होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती। रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिएगा राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही क्षणों उपरांत 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग भाग 88। दिन के 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा यातायात नियमों को समझें और समझाएं। साथ ही चर्चा होगी पोषण की पाठशाला और सुनिएगा आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों से जुड़ी यादें। दिन के 1:30 पर आप सुनेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा नाटक दृष्टिदान। दिन के 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें में आज पर्वतीय क्षेत्रों हेतु मक्का की उन्नत प्रजातियों पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजेश कुमार खुलबे। शाम के 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात में चर्चा होगी प्रवासी पक्षी दिवस पर। शाम 5:45 पर उत्तरायण प्रसारित किया जाएगा, जिसमें चर्चा होगी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर हर पक्षी मायने रखता है विषय पर उमा भट्ट जी से भेंटवार्ता। शाम 7:00 किसानवाड़ी कार्यक्रम में आज की बातें में आप सुनिएगा फसलों में वैज्ञानिक तरीके से उर्वरकों का प्रयोग, चर्चा होगी खरीफ की प्रमुख सब्जियों का उत्पादन विषय पर और पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया से भेंटवार्ता सुनिएगा। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर और 11:30 पर। लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में। दिन के 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत में और शाम 5:05 पर शैलस्वर के तहत। सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 10:05 पर सबरंग। दिन के 1:15 पर सुगम संगीत। रात्रि 8:00 सबरस कार्यक्रम के तहत और शाम 6:41 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्जर में

सुबह 10:35 पर सुरबहार में आप सुनेंगे एक ही कलाकार, 11 बजे सैनिकों के लिए, दिन के 12 बजे मेरी पसंद में, दिन के 2:45 पर फिल्म संगीत में सुनिएगा एक ही फनकार को, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत में और शाम 7:40 पर फिल्म संगीत में। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग, भाग 88।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रात वेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

अभी आपने श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग सुना, भाग 88। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशक

अभी आपने श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग सुना, भाग 88। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से जुड़े कार्यों के लिए 1096 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। भारत सरकार द्वारा जारी पीजीआई रैंकिंग 2024-25 में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए देश भर में 15वां स्थान हासिल किया। टिहरी जिले के जाखड़ीधार विकासखंड स्थित पाली गांव को अखरोट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर उन्हें तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से जुड़े कार्यों के लिए 1096 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में पुल और पार्किंग निर्माण, शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि जारी करना, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के वेतन भुगतान के कार्य भी शामिल हैं। इसके अलावा हरिद्वार में सड़क नवीनीकरण, जंक्शन सुधार और सौंदर्य करण के साथ ही रोड स्वीपिंग मशीनों की आपूर्ति से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। भारत सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई रैंकिंग 2024-25 में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए देश भर में 15वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष राज्य 24वें स्थान पर था। राज्य को आकांक्षी 1 श्रेणी से आगे बढ़कर प्रचेष्टा 3 श्रेणी में स्थान मिला है। एक रिपोर्ट।
1: विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसे राज्य सरकार की नीतियों, शिक्षकों की मेहनत और विभागीय निगरानी का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किए जा रहे सुधार अब परिणाम देने लगे हैं। राज्य ने विभिन्न सूचकांकों में कुल 584.5 अंक प्राप्त किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं। समानता एवं समावेशन, शासन, पहुँच, आधारभूत संरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और लर्निंग आउटकम्स जैसे क्षेत्रों में राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल शिक्षा को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में राज्य की रैंकिंग में और सुधार हो सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से हिना।
0: सचिव संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने चमोली कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, सीएम हेल्पलाइन, जनगणना, जल जीवन मिशन, स्वरोजगार, सड़क, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। सचिव ने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के साथ संस्कृत भाषा में भी नाम पट्टिकाएं लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनगणना कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले कार्य पूरा करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में होम स्टे योजना को प्रभावी बनाने, स्वरोजगार योजनाओं में तेजी लाने और जन समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया गया। सचिव ने जल जीवन मिशन, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन

0: यह सुनिश्चित किया जाए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच सकें। अल्मोड़ा जिले के मोलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में 5,91,00,000 रुपए से अधिक के प्रस्ताव को तकनीकी समीक्षा के बाद आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ आर राजेश कुमार ने की। बैठक में बताया गया कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परियोजना में विशेष निर्माण तकनीकों की आवश्यकता होगी। अधिकारियों ने जानकारी दी कि क्षेत्र में बढ़ते वाहनों के कारण पार्किंग की समस्या लगातार गंभीर हो रही है। बैठक में परियोजना स्थल के ड्रोन सर्वे और परीक्षण की जानकारी भी दी गई, जिसमें चयनित स्थान को पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े मामलों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि लंबित पत्रावलियां एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएं ताकि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्टेडियम में उच्चीकृत क्रिकेट मैदान का लोकार्पण कर इसे जनपदवासियों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद करते हुए उनके साथ क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाते हुए नशा मुक्त अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल सुविधाओं को मजबूत करने और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: 13 जिले के जाखड़ीधार विकासखंड स्थित पाली गांव को अखरोट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने ग्रामीणों द्वारा बंजर खेतों में लगाए गए अखरोट के पौधों और विकसित किए गए बगीचों को गांववासियों को समर्पित करते हुए ये घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोगों को बंजर हो रही भूमि को फिर से बागवानी और कृषि के उपयोग में लाने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं प्रभारी जिलाधिकारी कृषि विज्ञान डॉ आलोक ने बताया कि गांव को अखरोट ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए किसानों को अखरोट की प्रजातियों और उर्वरक प्रबंधन की जानकारी दी गई है।
2: कौन सी प्रजाति लगानी है, किस तरह से उसका उर्वरक प्रबंधन करना है, उसके संबंधित जानकारी दी गई थी, वैज्ञानिक जानकारी। साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सघन उर्वरक इसके संबंध में जागरूकता अभियान में उसमें हमने ये जानकारी दी है कि किसानों को उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारी ज़मीन की उर्वरता क्षमता भी बनी रहे और साथ में हमारी जो खेती की लागत है उसमें कमी आए और हमारा उत्पादन और साथ साथ में आर्थिकी बढ़े।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में राज्य प्रगति के तहत विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर उन्हें तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में नैनीताल और नरेंद्रनगर की सीवरेज तथा एसटीपी परियोजनाओं, हल्द्वानी काठगोदाम जल आपूर्ति योजना और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र समाधान कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सचिव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की और कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभाग बैंक समन्वय मजबूत करे। उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं का हर 5 साल में मूल्यांकन कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में मिशन एप्पल योजना की समीक्षा के दौरान क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने, किसानों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराने और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया। चमोली जिले के गौड़ा गांव के भनाली तोक में आकाशीय बिजली गिरने से मारी गई बकरियों के पशुपालकों को जिला प्रशासन ने राहत राशि वितरित की है। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तथा जिला उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने प्रभावित पशुपालकों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए। गौरतलब है कि 4 मई को आकाशीय बिजली गिरने से 30 पशुपालकों की 413 बकरियों की मौत हो गई थी। घटना के बाद जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर वन विभाग और तहसील प्रशासन ने जाँच कर रिपोर्ट तैयार की थी। अब एक नज़र समाचार पत्र

0: सुर्खियों पर हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया पर अधिकतर समाचार पत्रों की नजर है। अमर उजाला लिखता है, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे, ताजपोशी आज। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शुभेंदु संभालेंगे बंगाल में सत्ता। प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी पर अमर उजाला ने लिखा है, योजनाओं के लिए 1096 करोड़ की वित्तीय मंजूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, शहरी निकायों पंचायतों और कुंभ के लिए सीएम ने दिए 1096 करोड़। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से जुड़े कार्यों के लिए 1096 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। भारत सरकार द्वारा जारी पीजीआई रैंकिंग 2024-25 में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए देश भर में 15वां स्थान हासिल किया। टिहरी जिले के जाखणीधार विकासखंड स्थित पाली गांव को अखरोट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर उन्हें तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तारा सिंह लोधियाल और साथियों के गाए कुमावनी लोकगीत।

अभी आपने तारा सिंह लोधियाल और साथियों के स्वरों में गाया झोड़ा सुना। आइए अगली प्रस्तुति में भी सुनते हैं इन्हीं की स्वरों में गाया झोड़ा।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तारा सिंह लोधियाल और साथियों के गाए गीत। आइए सुनते हैं इनके स्वर में गाई छपेली।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमावनी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक मंजरी। और इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं तारा सिंह लोधियाल और साथी।

0: तारा सिंह लोधियाल और साथियों के गाए इसी कुमावनी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने TVK को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले TVK ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक S कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडापड्डी

0: पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: Exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, आज बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। सुनिए ताल रूपक में तबला वादन, कलाकार है उस्ताद जाकिर हुसैन और आपके साथ सारंगी पर संगत की है उस्ताद सुल्तान खान और तानपुरे पर है मदन मोंगले।

कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंगरानी, मौसम, संगीता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता। लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक और पंखुरी। कांति निकेतन राजनगर से हमारे पास फरमाइश आई है। मंजीत, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन की। शाहदरा दिल्ली से इस गीत को पसंद कर रहे हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा। चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

मल्होत्रा, लाडो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत। इसी गीत को पसंद किया भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार।

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, यकीन फिल्म से। हज़रत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार पोडाना, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार दीपक झावेंद्र, अमलेश्वर महादेव घाट से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्मण मल्होत्रा।

साथ विभू। आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अगला फरमाइशी गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जोशीला से। शब्द रचना साहिल लुधियानवी की है और संगीत निर्देशन किया है R.D. बर्मन ने। और इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार। औरंगाबाद से इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्रांजलि, सोहन बोरगांवकर, सदानंद बोरगांवकर, सुभाष। लोहारी ग्राम जिला खंडवा से इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे। मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके ढेर सारे साथी। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं ये गीत। इसी गीत को पसंद किया है आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा।

श्रोता इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी अरोड़ा, आरती अरोड़ा, डुमराव से वली उल्ला अंसारी और राज एस डी अंसारी, पंजाब से सुरेश कगनीजा और पूनम कगनीजा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप आए बाहर आई फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, महताब आफ्ताब और मेराज। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्र सेन। इसी गीत के लिए हमें खत भेजा है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
2: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गीत निर्झर में। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुकेश का गाया गीत फिल्म कभी कभी से। साहिर लुधियानवी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है खयाम ने और इस गीत को पसंद किया है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आरएम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। इसी गीत को पसंद किया है लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज़, अमान, माही, नीलोफर, शन्नू और शब्बो। सहरसा गंगजला से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राधे, राकेश, रंजन, राजीव, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू, रजनीश, आनंद, आशुतोष, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, जगजीत सिंह का गाया और इन्हीं का संगीतबद्ध किया फिल्म प्रेम गीत से। गीतकार हैं इंदिवर और इस गीत को पसंद किया है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, सरिता ग्वाड़कर, प्रिंस मुंबई से सिद्धांत ग्वाड़कर, प्रणीमिता नागपुर से, वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित और ध्वनि। छत्तीसगढ़ से इस गीत को पसंद किया है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति शिवांश वर्मा। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है गणेशपुर गंज डुडवारा से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू शेख, शमा परवीन, अलकरम बेगम, अफताना बेगम, मेहजमी शेख और मिर्ज़ा नसरीन बेगम। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में याराना फिल्म से। अनजान के लिखे गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं नई दिल्ली से श्रुति ओबेरॉय, किरण सिंह सृष्टि, मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज, मध्य छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन और प्रकाश देवांगन। इसी गीत के लिए हमें खत भेजा है पश्चिम बंगाल से रेहान शर्मा, रोशनी, रवि, इंदर, करणदीप और भूपिंदर। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

इसी गीत को पसंद कर रहे हैं पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू।

और आइए अब कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है SD बर्मन ने, और इस गीत के लिए हमें खत भेजा है सहारनपुर से SK नारंग, आशा नारंग, पार्थक, सोनाली और कृषभ। मध्य प्रदेश से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार पोडाना इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना और चारवी सांवले। आप सभी की पसंद पर

0: अकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, शुभम, पवन, संजीव, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इसी गीत के साथ श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में चंद फरमाइशी फिल्मी नगमों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विभू कृष्णा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: वो नहीं आएगा, मान नहीं पाओ।
0: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
3: राज्य के राजनीतिक

0: इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश कार्यक्रम सबरन। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए अनुराधा पौडवार और चंदन दास की गई नज़्म।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Only for Rs. 10.99 lakh, with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer, backed by India's largest charging network. India goes electric.
8: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सबरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए मिताली सिंह की गाई गजल।

0: All-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees and total offers up to 80,000. Maruti Suzuki Victoris, drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरेना की विक्टोरिस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरिस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरेना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल,

0: तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरीज खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: अंतराल के बाद सबरंग कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की गई नज़्म।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर हथियारों की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उड़ीसा के तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। टीएआरए को हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से इसे डिजाइन और विकसित किया है। ये अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। विकास सह उत्पादन साझेदारों और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से इस किट का निर्माण किया गया है, जिसका उत्पादन कार्य भी शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित

0: जित और वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने मां चंडी देवी मंदिर पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर मार्ग और साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मंदिर समिति और संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दर्शन व्यवस्था सुचारू रखने और मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के आई कार्ड जारी करने और उन्हें वर्दी में तैनात रखने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर संतोष जताया। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर के आसपास फैले कूड़े कचरे को लेकर वन विभाग को सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण रोकने और दुकानदारों को साफ सफाई बनाए रखने तथा कूड़ादान रखने के निर्देश भी दिए गए। चारधाम यात्रा को देखते हुए हरिद्वार जिले में सीवरेज कार्य के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसियां दिन रात कार्य कर रही हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों, व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सड़कों की मरम्मत जल्द पूरी की जाए। महात्मा गांधी नरेगा में उत्तराखंड ने देश में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ग्राम विकास विभाग ने ये जानकारी दी। ग्राम विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने ग्राम विकास विभाग की बैठक कर कई योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जानकारी दी गई कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 99% भुगतान करते हुए प्रदेश ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस दौरान ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयास के उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाए। इस दौरान बैठक में जानकारी दी गई कि साल 2025-26 में हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड के कुल 3.01 करोड़ के उत्पादों की बिक्री की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 290 करोड़, 10 लाख और जी राम योजना के लिए 705 करोड़ 25 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में देहरादून के रेसकोर्स में निर्माण किए जा रहे व्यावसायिक बहुमंजिला को प्राधिकरण की टीम ने सील करते हुए कहा कि बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि MDDA की टीम लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर का सुनियोजित विकास MDDA की प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति को नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री बर्निया ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य की प्लानिंग को देखते हुए नियमों का पालन बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है और अगले CDS का पदभार ग्रहण करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। वे वर्तमान में सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उपप्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुर बहार में।

सभी श्रोताओं को विभु कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सुर बहार कार्यक्रम में एक ही कलाकार में हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण। हिंदी

सिनेमा के उन चुनिंदा गीतकारों में से एक थे जिन्होंने संजीदा गजलों से लेकर चुलबुले और हास्य गीतों तक हर रंग में महारत हासिल की थी। आज बात उस फनकार की जिनकी कलम से निकले शब्द कभी हंसाते थे तो कभी आंखों के कोरों को गीला कर देते थे, जिन्हें राजेंद्र कृष्ण के नाम से दुनिया जानती है। वो एक ऐसे ऑलराउंडर थे जिन्होंने शकील बदायूनी की नज़ाकत और शैलेंद्र की सादगी को एक साथ जिया। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं इस गीत के साथ।

क्या गहराई है इन शब्दों में। वाकई राजेंद्र कृष्ण जी का जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने में बहुत ही सरल शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लय ऐसी कि ये गाना 70 साल बाद भी शादियों और पार्टियों में सुना जाता है। इसी गाने ने अभिनेत्री वैजयंती माला को हिंदी सिनेमा में एक डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित कर दिया था। इस गाने के अनगिनत रिमिक्स बन चुके हैं, जो साबित करता है कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल आज की पीढ़ी के बीच भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उनके लिखे सबसे यादगार और चुलबुले गीतों में से एक सैया दिल में आना रे। ये गाना उनकी सादगी और आम बोलचाल की भाषा को संगीत में ढालने की कला का बेहतरीन नमूना है।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर बहार, और एक ही कलाकार में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण के चंद गीतों को। फिल्म बड़ी बहन का गीत राजेंद्र कृष्ण के करियर के सबसे सफल और सदाबहार गीतों में से एक है। इस गाने ने उस दौर में लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और यही नहीं, इस गीत और इस फिल्म ने एक मशहूर और पहली संगीत की जोड़ी भी दी। जी हाँ, इस गाने को संगीत देने वाली जोड़ी हिंदी सिनेमा की पहली संगीतकार जोड़ी मानी जाती है, हुस्नलाल भगत राम की जोड़ी। इसी फिल्म और विशेषकर इस गाने की सफलता ने राजेंद्र कृष्ण को फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े गीतकार के रूप में स्थापित किया। इस गाने में नायिका की झिझक और पहली मुलाकात की घबराहट को राजेंद्र जी ने बहुत ही खूबसूरती से चुप चुप खड़े हो जैसे सरल शब्दों में पिरोया। सुनिए।

श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण जी की खासियत थी सरलता। वो मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत ही आसान शब्दों में कह देते थे। और हाँ, वो सिर्फ गीतकार ही नहीं, एक बेहतरीन पटकथा लेखक और संवाद लेखक भी थे। फिल्म पड़ोसन याद है ना आपको? उसके अमर संवाद और गाने उन्हीं की देन है। चलिए थोड़ा मूड बदलते हैं और सुनते हैं एक सदाबहार रोमांटिक नगमा, उन्हीं का लिखा हुआ।

श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीतों की फहरिस्त में तलत महमूद की मखमली आवाज के साथ सजे नगमे एक अलग ही सुकून देते हैं। तलत साहब को उनकी कांपती आवाज के लिए जाना जाता था और इस गाने की उदासी और गहराई को उनके अलावा शायद ही कोई और इतने प्रभावी ढंग से गा पाता, जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जब राजेंद्र कृष्ण की कलम सलिल चौधरी की धुन से मिलती है और आवाज़ होती है तलत महमूद की, तो संगीत नहीं एक एहसास जन्म लेता है। सुनिए फिल्म छाया का ये अमर गीत।

श्रोताओं, आज सुर बहार एक ही कलाकार में हमने आपको सुनाए मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीतों को। इस श्रृंखला में आपने सुनी ब्लैकमेल, बहार, बड़ी बहन, पड़ोसन और छाया फिल्मों के नगमे। आज राजेंद्र कृष्ण जी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके दिए क्लासिक गीत हम सबके दिलों में हमेशा उनको जिंदा रखेंगे। तो आज इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में चंद गीतों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुरबहार कार्यक्रम सुन रहे थे। FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

मुकेश और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने हम हिंदुस्तानी फिल्म का गीत सुना। प्रेम धवन के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था उषा खन्ना ने। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे बोलों को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: automation built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
1: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम में आप सुनिए दिल तो पागल है फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है उत्तम सिंह ने।

और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत, उदित नारायण, अलका याग्निक और मंजीत अख्तर की आवाजों में। गीतकार है समीर और संगीतकार है जतिन ललित।

इसी गीत के साथ हमारा कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न हुआ। जय हिंद।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, आप प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। सुनिए पंडित मोहन चंद्र पांडे का सितार पर बजाया राग जौनपुरी। आपके साथ तबले पर संगत की है सुरेश प्रभाकर ने।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे मोहन चंद्र पांडे का सितार पर बजाया राग जौनपुरी। तबला संगतकर्ता थे सुरेश प्रभाकर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजुपांते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आज चंद गुफ्तगु चुनिंदा बातें चुनिंदा नगमे जिंदगी के यानी जिंदगी के खूबसूरत इंद्रधनुषी एहसासों से सजे तराने, चलिए आपको सुनाए मेरी पसंद के बहाने। अब रेडियो को ही ले लीजिए, हमारे सुख दुख उमंग उल्लास हर्ष विषाद जिंदगी से जुड़े हर रंग में विविध कार्यक्रमों से सजा है प्यारा न्यारा रेडियो। तभी तो जिंदगी में गम भूलिए, खुशियां मनाइए और कुछ यूं रेडियो के संग गुनगुनाइए।

जी हाँ, जिंदगी एक रेडियो की तरह है, अलग अलग धुनों से हमारी जिंदगी को अलग अलग रंगों से भर देती है। और जिंदगी की बात करें तो मोड़ बहुत है जीवन की राहों में, अनदेखे अनचिन्हे मोड़, सपाट रास्तों से उपजी ऊब तोड़ते हैं मोड़, मोड़ पर साफ दिखाई देता है तय किया रास्ता, आने वाला दृश्य, मोड़ पर बदल जाती है हवा की दिशा, धूप का पहलू, बारिश का कोण, एक नए रास्ते की संभावना भी यहीं से शुरू होती है। यानी जिंदगी का हर पल जो भी गुजरे खुशी से गुजरे, और पता नहीं कल क्या हो।

जी हाँ, जिंदगी में जो भी किया जाए पूरी शिद्दत के साथ किया जाए, किस्मत में जो होगा वही मिलेगा, लेकिन खुद की कोशिश में ज़रा भी कमी ना रहे, बस यही सोच एक नई राह बनाने का बीज है जो भविष्य में अंकुर बनकर प्रस्फुटित होगा, तो जिंदगी एक नए मोड़ से अपनी राह चुन ही लेगी। जिंदगी को हमेशा गले से लगाना है और हमने भी तो इसके हरे गम को गले से ही लगाया है ना।

शुद्ध जिंदगी को एक नया सा मोड़ दें, अपनी कश्ती को भंवर में छोड़ दें, हौसले की एक नई तहरीर लिखें, खौफ की सारी हदों को तोड़ दें, फिर किसी इजहार को स्वीकार कर एक नए रिश्ते से रिश्ता जोड़ दें। जिंदगी कुछ यूं ही है, जिंदगी एक प्यार का नगमा है जिसमें सुख दुख प्रेम विरह आशा निराशा के कभी मधुर ताने बाने सजे हैं, तो कभी कड़वे स्वाद के ना जाने कितने बहाने हैं। जिंदगी के हर रंग को गुनगुनाना है, हर तराने को कुछ यूं ही मुस्कुरा के गाना है।

जी हाँ, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के रास्तों में कभी धूप है, छाँव है, रात है, दिन है, चलना है, रुकना है, यही ज़िंदगी का क्रम है। इसी रफ्तार संग ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एक जगह पर टिके रहे, सोचते रहे तो क्या हासिल होगा? कुछ भी तो नहीं। आखिर ज़िंदगी हर पल, हर दिन कुछ न कुछ हमसे कहती है, हमें समझाती है। सुनना, समझना, बस हमें ही तो है ना।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें। यही

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: तो श्रोताओं, जिंदगी के कई है रंग, इंद्रधनुषी रंग, जिनमें ढली है, सजी है, पली है, बस रही है, खुश है जिंदगी। कभी अपनी सी, कभी बेगानी सी लगती है ये प्यारी जिंदगानी। बहरहाल जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। खुलकर जिए, मस्त रहें, खुश रहें और आकाशवाणी अल्मोड़ा के कार्यक्रम सुनते रहें।

जी हाँ, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सच जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी सी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी का यही प्यार भरा है तराना, जिसे हम सबने है गुनगुनाना। आज मेरी पसंद में बस इतना ही। अंजु पांगती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, 12:23 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। ऐप पर

स्वागत छू आपू सबना कार्यक्रम अर्पण में। कार्यक्रम सुनने सवैदिक बालिन के शोभा पांडे नमस्कार। दगड़ो खत्म है आपू और हमारे इंतजारी और हमें पूछिया कार्यक्रम में पानी तो आपू सब स्वस्थ होना ला कुशल मंगल होना ला। बस दगड़ियो हम लोग यही चाहूँ आपू सब स्वस्थ रहो कुशल मंगल रहो और इसी कारण आपू और हमारी दगड़ बड़ी हुई रहो। देखो ये हमारी याद छे जो हम एक दूसरे हैं इसी हम अपन मन बटी एक दूसरे जुड़ी छे। तो बड़े रेडियो ले ऐसा छे रेडियो एक सदी हमले ज़्यादा बखत बटी हमारे दिनचर्या में शामिल छे। संचार सूचना और मनोरंजनक एक महत्वपूर्ण साधन छे। ये आकाशवाणी है यह गूंज केवल एक रेडियो स्टेशन पछाड़े नाते न बल्कि हमारे देश करोड़ों मनखियों लीजिए एक भावनात्मक जुड़ाव छे। या 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी देशक सांस्कृतिक सूचनात्मक और सामाजिक धड़कन बढ़ घर घर में समाई छे। यह केवल प्रसारण धकड़ धकड़ में यह एक राष्ट्रीय आवाज लछे। दिद्वाणियों पुराण बखत में घरों में मोहल्लों में या फिर चौपालों में एक ट्रांजिस्टर हो ची और उत्ती के जब यह ट्रांजिस्टर जती हो ची उत्ती का एक त्यौहार और उत्सव जश्न हो ची। सबन के गीत मनोरंजन समाचार सब नक इंतजार हो जी। हर के पास उबखत यह चीज़ उपलब्ध लेनी छी रेडियो

0: उ बखत में जब देश और दुनिया है जोड़नक यो एकमात्र साधन हमारे पास ची। देश में संकट बखत युद्ध बखत यो ही एक साधन ची हमारे पास जेल या रेडियो ही ची जो परिवारों के लिए सूचना एक इकल साधन ची। बखत दगा दगड़े आकाशवाणी लापू को बताओ आज यह केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं थी बल्कि सोशल मीडिया एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले यह उपलब्ध छे। मन एक बात जस कार्यक्रमों ले आज युवा पीढ़ी ही हर एक युवा पीढ़ी यह जुड़ गए तिदबड़े 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी अपन भव्य विश्वास और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यह आदर्श व दगा जुड़ी हुई छे। 90 सालों के सफर एक गौरवशाली इतिहास से हमल जी हर पीढ़ी दगाड़ हर एक पीढ़ी दगाड़ हर एक उम्र दगाड़ पली बड़ी आज ले यो हमार जीवन में एक खास जग धरम हमार बचपना किस्से कहानी बुजुर्गों ज्ञान और राष्ट्र एकता सब कुछ याद छे और यो सब हमेशा इसी कन घुसते रहो और इसी के ईद गए हमार दगाड़ बड़ी हुई रोल चर्चा और लापू दगे कार्यक्रम में आगिल के हो लेकिन पहली मणि बर्णु थोड़ा आगिल के आप मनोरंजन करूं लेकिन भी है पहले सुनो हम इनेर बात
1: Every arrival this May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value, with its bold design and spacious comfort. It's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
2: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry! Offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: Next.

0: This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: स्वागत है एक बार फिर आप सब नव योग कार्यक्रम में। आप कार्यक्रम में मैं अगर के वर्ण और सुन क्षेत्र संकलित बातचीत यातायात तक नियमों को समझूं और समझाऊं यह विषय पर श्रोता दगाड़ करी गई यह हमारे क्षेत्र संकलित बातचीत।
4: आज वक्त यातायात का जो नियम छे वो हमन के पत्ते जरूर होने छे और तगड़ में उनर पालन करने ले ताकि कोई ना प्रकार एक सड़क दुर्घटना है बचाव है सको और हम सुरक्षित रहे। श्रोता दगड़ सड़क सुरक्षा के लिए कतु प्रभावकारी उपाय होने अगर उनर पालन करी जोते ने तो सुरक्षित सफर हमर रह सको।
3: आज हम कार्यक्रम में बातचीत करने लग रही हैं यातायात नियमों बारे में कि हम सब यातायात नियमों को समझूं और उनका पालन न करें तो यही विषय पर बातचीत करना लीजिए। आज हम गई आपू शहर अलमड़ में और यह हम बातचीत करी एक निजी वाहन चालक जो यातायात नियमों पालन कैसे कर रहे। शुभ नाम देवे
5: राजेश।
3: राजेश जी बहुत बहुत स्वागत छो आपू हमारे कार्यक्रम में।
5: वो लोगों के लिए बहुत बहुत नमस्कार।
3: आपू एक निजी वाहन चालक छा दुपहिया वाहन आपू कहो की आपू चलो छा तो जब आपू रोड में ये दुपहिया वाहन चलो छा तो के बातों ध्यान आपू दीजिए।
5: वो लोगों बहुत बढ़िया विषय धर रहा जना की आजकल सबन के पास स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूटी सब छे और सावधानी बहुत जरूरी छू।
3: बिल्कुल
5: सड़क दुर्घटनाओं में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ोतरी होने दगड़ियों सड़क सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय छु जना प्रत्येक चालक और पैदल यात्री के प्राथमिकता देना चाहिए। घर चलोन तक हमेशा समय चालक के सतर्क रहना चाहिए यातायात संकेतों का पालन करना चाहिए और अगर चार पहिए वाले गाड़ी चलो नु तो सीट बेल्ट जरूर पहनना चाहिए।
3: तो जब आप दुपहिया वाहन चलो छा बाइक या स्कूटी तो आप एक आम नागरिक होने नाते के

0: तो ध्यान धर जाए।
1: हम तो सब अभी पहले ध्यान धरनो कि हम भल कंपनी वाले हेलमेट पहनूं, बिना हेलमेट है गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। सुरक्षा जब तुले संभावित उपाय छे वो करण छे, ध्यान में धरवेर गाड़ी चलाना चाहिए। ये अलावा पैदल चलने वाले मनखियों के लिए बहुत ध्यान धरण चाहिए, विके हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए।
0: जब आपको डबल सवारी दर छे तो तब की चीजें ध्यान देना जरूरी छे।
1: जब हम अपन जगह कोई दगड़ू के लिए भेटाओं तो गाड़ी चलाने तक हमेशा ध्यान रोड पर और अगिल पे ओनी वाली गाड़ी में धरन। हमेशा आपो को यह समझना चाहिए कि सावणी पे कोई गैर आने या लीजिए अपन सुरक्षा हिसाब अपन लाइन में चलना चाहिए। और दुहर में आप लोगों को बतौन चाहू तब तक अलग हम जतल दुहार सवारी बैठनू तो आपू हे ज्यादा ध्यान उस सवारी धरण चैन वो भली भांत पिछड़ में भय रहे व्हील पकड़ रहा नी पकड़ रहे द्विदियों हेलमेट लग हो चैन। और दुहर सवारी बैठने लीजिए हेलमेट जरूर हो चैन, बिन हेलमेट है दुहे सवारी के निभटाउन चैन।
0: राजीव जी अपुल बताए और तू वक्त अपुल हमन के दे एक लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दगड़ियो यही क्रम में आज हम उन बातचीत करी एक और बैंड दगड़ जो हमन दगा जोड़ रही तो हम इन्होंने जानो की यातायात के नियमों के ध्यान देने जब यू रोड में चलने। बैनी आपू नाम?
2: मैं नाम चित्रा अधिकारी।
0: तो जब आपू कार चलो छा तो के बातों ध्यान आपू दीछा जब आपू सड़क में हिट?
2: जब हम सड़क में निकल लो तो हम उनके बहुत बातों का ध्यान देन पड़ो। गाड़ी बेर जब हम रोड में जानू तो और ले हमन का सतर्क रोने की जरूरत पड़ी किले की रोडम पैदल मनखिले होने जानवर ले भत्ते होने और दुपहिया वाहन चौपहिया वाहन ले खूब चलने। तो यह सब यातायात नियमों ज्ञान होन बहुत जरूरी हो। अगर हम उन नियमों पालन नहीं करनो तो हम अपन लीजिए और दूसर लीजिए ले खतरे पैद कर सकनो। एक लीजिए उन सब नियमों हमको जानकारी होने लगे बहुत जरूरी छू। जैसे कि हम चाहे तो पैदल हों या गाड़ी में हों हमको अपन बहुत तरफ चलन जरूरी छू। ज्यादातर तो हमारे देश में यातायात तक यही नियम प्रचलित छू। जब ले हम गाड़ी चलो सबन पर पहले हमन का मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करन चाहिए किले की आजकल के समय में यह सबू हबे ठुल दुर्घटना का कारण बनन लाग रहा। अगर चौपहिया वाहन की बात करूँ तो ज्यादा सवारी ले जाने दुर्घटना का मुख्य कारण हूँ। और दूसरा आजकल योले देखन लाग रहा कि लोग पीक है बेर अपन गाड़ी चलोनी अपन पर नियंत्रण नहीं होने कारण कतु बखत दुर्घटना है जी। यह लीजिए हम सब उनके यातायात नियमक जानकारी हो और उनर पालन करन ले बहुत ज्यादा जरूरी छो।
3: दीदी अपन ले ध्यान दी हनल कि ओवरटेकिंग कारण ले कतु बखत दुर्घटना है। आजकल बहुत कम उम्र के नानतीनक हाथम ले गाड़ी दिखन लग गई। गाड़ी तो हम नानतीना को दी लेकिन यातायात नियम हम उनको नहीं बतून। जैसे कि रोडम गाड़ी चलू में के चीजक ध्यान देन छु। दूसर इनर गाड़ी की रफ्तार और दगड़ में हेलमेट नहीं पहन एक लीजिए इस बाबू कुले जागरूक रहने की बहुत जरूरत छू। या तो नानतीना को गाड़ी नहीं दियो और अगर दिशा ले तो सरकार द्वारा निर्धारित उम्र के बाद हम अपन नानतीना को गाड़ दी जाए। ये छोट छोट बातों ध्यान दी बेर ले हम बहुत हद तक अपन नानतीना को दुर्घटना हो बचा सकूं।
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बनी अपूल हमन को बताए। कार्यक्रम में अब हम दगर अखिल का जोड़ी यातायात पुलिस कर्मी छी थी हम दगर तो हम इन्होंने बातचीत करनो इन्होंने जानो की यातायात के नियम।
4: यातायात कांस्टेबल श्री विनोद सिंह जुड़ा तो आओ जानो इन्होंने जो यातायात नियमों के बारे में। विनोद सिंह जी सबन है पहले तो मैं आपको कार्यक्रम अपन में आपका बहुत बहुत स्वागत कर।
5: धन्यवाद मैडम।
4: दाजी सबन है पहले तो मैं आपको यही जान चूल की यातायात के नियम छे।
5: यातायात नियम छे पहल में सब पहल में और पब्लिक का जागरूक करनी छे। स्कूल में जाबर जागरूक करनी छे और सब पहल में ड्राइवर का सब ज्यादा जागरूक करनी। नियम अगर उनका जागरूक करनी छे कि गाड़ी चलू बत्ते तुम सीट बेल्ट प्रयोग करनी छे, बिना पिया गाड़ी चलून छे, दुपहिया वाहन चलून बत्ते हेलमेट प्रयोग करनी छे और चार पहिया वाहन चलून बत्ते स्पीड ध्यान रखनी छे हमूल कति स्पीड में गाड़ी चलून छे और मोबाइल प्रयोग न करनी छे।
4: यो यातायात नियमो हम पालन कैसे कर सकते?
5: यातायात नियमों पालन करना है सब पहल में अगर हम रोड में निकलना गाड़ी चलून बत्ते थे रोड में तीन प्रकार है बत्ती जल रू छिन तिराहा या चौराहा में। सब पहल में लाल बत्ती जय प्रयोग छ की तुम अपनी गाड़ के थोड़ी देर ठहरा। ऊक बात छ प्योल बत्ती जब जल छ ऊक मतलब छ की तुम तैयारी हालत में है जा तुम अपनी गाड़ बढ़ून छे। फिर जब ऊक बाद हरी बत्ती जल छे ऊक बाद तुम कोनो मतलब छ की उमें तुम गाड़ी अपनी तैयारी हालत में ली जा तुम सुरक्षित जा सकता।
4: यो जो यातायात नियमों जो लोग पालन नहीं कर रहे तो उनके के परेशानी आ सके?
5: यातायात नियमों पालन जो ना करो थे पहले में तो आपको जान जोखिम में डाल से जान जोखिम में डालने साथ साथ वो दूसरा के लिए घायल कर सकते और आपूल घायल कर सकते परिवार में समस्या ला सकते जय कुल सड़क दुर्घटना होने चांसेस बहुत ज्यादा है सकल।
4: दाजू यातायात दौरान होने वाली दुर्घटनाओं है हम कसी बच सकते?
5: दुर्घटना जिन होने से आज टाइम में सब बहुत ज्यादा तो होने से तेज रफ्तार है आदमी की कारण है कि अपनी गाड़ी के तेज रफ्तार चढ़ूंगे आगे बटे गाड़ी इनार में लोग चलने या बटे किनार में लोग

0: ना दिखने और अपनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर दिए और कहत तो मोबाइल में फोन में लाग रही गाड़ी चलून बत्ते कहत तो आपने फिकर गाड़ी चलून और ओवर स्पीड में चलून ध्यान का और से रील बनून में ध्यान से जयपुर एक्सीडेंट है ज्यादा संभावना बनने और एक्सीडेंट ज्यादा हुए तुम यातायात नियम पालन करने से टैक्सी यूनियन वालों को बता रहा है कि तुम गाड़ी चलून बत्ता अपने टैक्सी चालकों का कसिए उनका समझून छ की गाड़ी का कसिए चलून छ और कै रफ्तार में चलून छे बिना पिया गाड़ी चलून छे मोबाइल प्रयोग ना करनी सीट बेल्ट का प्रयोग करने से तब तुम गाड़ी चला जयकुल की दुर्घटना में अंकुश आर वाले।
1: बिल्कुल सही बात तुम कहे कि लकी आजकल हम येलो देख लो ना कि जब ये रोड में सवारी सबन है ज्यादा यू गाड़ी में भर ली जाने जैसे उन्हीं की ओवरलोडिंग तो ये एक लीजिए के नियम अपन बड़ी हुई थी
0: ओवरलोडिंग है था पहले में हमारे द्वारा जाग जाग में चेकिंग अभियान चले जानी जितला अगर ओवरलोडिंग गाड़ी भरी न ऊक चालान करियो न
1: अच्छा।
0: चालान करने साथ साथ उनका हम जन जागरूकता थी हम बार बार बतुनी कि अब तुम ओवरलोडिंग निकल जेल गाड़ी पलटी न चांस बन सकन और जेल मतलब गाड़ी में बैठे सवारी के लिए नुकसान ऐसा जगह जान जा सकन अब कम कम सवार भर जितनी में पास थी तुम्हारी गाड़ी उतनी सवार ले जाए तुम अपने गंतव्य स्थान ही जा सकते।
1: तो ये जो वाहन चलन वक्त सीट बेल्ट कतू जरूरी है
0: सीट बेल्ट हमारे वाहन चलन बत हमारे जीवन हिन्न बहुत अनमोल से अगर हम सीट बेल्ट पहन रहा अगर हम अपनी कार चलनी है अगर बटे ट्रक टक्कर ले लग गए हम का उम्मीद चांस बचना चांस हमारे 50% छिन जै सीट बेल्ट पहन रखने हम का वो सीट बेल्ट अगर टकरा ले जाना थे तो हमको 50% चांसेस है हम अग्घा के धक्की ना जयकुल हमारे सिर में चोट ना आ सकनी हम सीट टूट बैर बाहर ना जा सकना तो वो सीट बेल्ट है हमारे 50% जान बचने चांसेस है।
1: तो मैं ला दगड़ू थे यही कौन जानू कि आप ले जब गाड़ी चलू चाह तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करिए। दादाजी आज वक्त में हम सड़कों में देख लू की छोट छोट नंदिन जो 18 साल है तली होनी जनता नावाली कही जा यूला हमन के गाड़ी चलाते हुए दुपहिया वाहन चलाते हुए बहुत देखनी तो ये बात में आपको कौन चाह
0: जिन नाबालिग गाड़ी चलने स्वभाव पहल में हमारे द्वारा सब स्कूल में जाकर अभियान चलाएंगे जय में हम जूनियर ट्रैफिक फोर्स और ट्रैफिक वॉलियंटर नाम में उनका चिन्हित करनी कि तुम अफू संग दूसरा के लिए जागरूक करके नाबालिग के लिए गाड़ी ना चलूँ और उन माँ बापों के लिए हम बतूनी कि अपने चल चाली के तुम गाड़ी नहीं दिए जो दुर्घटना कारण बन सकते और दूसरा का जोखिम बना सकते तुमका भला दिन जेल रह सकती और जय जुर्माना तुम भुगत नहीं कोर्ट में जब जा सकता।
1: तो कहीं ना कहीं बच्चों पास अगर गाड़ी है तो हम अभिभावक वीक लीजिए उठ के जिम्मेदार छे बहुत बढ़िया बात दादाजी आज वक्त में न सिर्फ हमारे समाज में यह कदर हमारे समाज में खोखला करने लग रहा कि आप जाना जाचा उसी समाज में हर जाग पर रेल अपन खोट पसार रख और वाहन चलून वक्त में बहुत लोग देखने जो नस में गाड़ी चलूनी तो उना लीजिए जो नस में गाड़ी चलूनी उना लीजिए के नियम थे ताकि वाहन चलून वक्त नस से निकल
0: वाहन चलून वक्त नस से करनी सब पहल में था उन अपने शरीर का नुकसान पहुँचनी नस में जिन वाहन चलूनी उन्होंने नियम हम की बना रहा है जितला जितला हम चेकिंग करनी है अगर कोई हम शराब पीबेर पकड़ी जाना पहले में हम मेडिकल करूनी है फिर उसके बाद उसका थाने में वो खिलाफ मुकदमा दर्ज करवेर उसके थाने में बंद करूनी है और वो गाड़ी सीज करूनी है वो गाड़ी कागज हम सब संबंधित कोर्ट में भेजनी है जयकुल बाद में वो कोर्ट में जान और परेशान है जान रोड में चलने वाले लोगों का ना देखना है उन्नी वाले गाड़ी का ना देखना है जानवर चलने उन्होंने ना देखने सब पहले में उनको ले नुकसान ना आपको ले नुकसान पहुंचे जयकुल टकराल तो उल्ले मृतक है सच और रोड में चलने तो उनको ले मृत्यु है जैसे कोई ले अपने यातायात नियमों पालन ना करानी है उन्होंने था हमूल की कर रहा उत्तराखंड पुलिस वाले एक ट्रैफिक ऐप बना रहा जय में पब्लिक लाभ चालान कर सकती अगर कोई गाड़ी बेकार चलूना खतरनाक है चलूना गति सीमा अपने ज्यादा छे रैश ड्राइविंग करना मोबाइल का प्रयोग की बार गाड़ी चलूना खतरनाक तरीके से गाड़ी चलूना तो हमें की कर सकना पहले में तो वीडियो बनूना
1: अच्छा।
0: वीडियो बना बार वो खींच बार उत्तराखंड ट्रैफिक आया अच्छा हम लोग डाउनलोड कर बार उमे अपनी ID बना बार वो चीज का हम उमे डाल बार पुलिस द्वारा वो चालान करवा सकना जैमे की वो भला दिन कॉल की मेरी चालान निकट पुलिस रोकी ना कौन उठेगा ये जिम्मेदारी हम पब्लिक के लिए दे रहा है कि तुम ये चीज चालान कर सकते
1: तो यह यातायात नियमों हम सही ढंग पालन कर सको
0: यातायात नियमों पालन हम सब पहल में ढंग कैसे कर सकते स्कूल में जाए टैक्सी यूनियन वालों संग जाए अल्मोड़ा जिन बुजुर्ग या नागरिक जनता से उस संग हम निवेदन करनी कि यातायात नियमों पालन करे और यातायात नियमों पालन करने साथ साथ दूसरा के लिए जागरूक करते रहो अपनी और लोगों की जान बचाया टक टक टक टका टक दाजू जब गाड़ी चलू छा वन वे नियमों का तुम पालन करिया वन वे नियमों का तुम पालन करिया माठू गाड़ी यो तुम चलाया सीट बेल्ट लगू ना तुम जी

0: टक टक टका टक दाजू जब गाड़ी चालू छा नो पार्किंग नियम का पालन करिया ड्यू है जादे लोग तुम जिन बैठाया दुपहिया वाहन चलू छा हेलमेट पहरिया टक टक टक टका टक दाजू जब गाड़ी चलू छा अल्मोड़ा यातायात पुलिस को सहयोग करिया।
1: इसु बढ़िया जानकारी दाजू तुम तो दे एक गीत माध्यम आपूल यातायात नियम सार यो समेट में यो गीत दे डालना की तो इतु सुंदर जानकारी विनोद सिंह जी यो कार्यक्रम माध्यम आपूल हमारे श्रोता दगरिन के दे एक लीजिए आपू बहुत बहुत धन्यवाद।
2: उक्त हमी पहल में तुम तहे दिए धन्यवाद करनू पुलिस उत्तराखंड तौर बढ़वे थे और अल्मोड़ा पुलिस आए तुम बहुत बहुत धन्यवाद करने चाहें पहल में कला कि तुम जो ये असल काम करना है जन जागरूक करना है सड़क दुर्घटना में अंकुश लगुने था और यातायात नियमों के जानकारी देने चाहें आपने तो ये था बहुत बहुत धन्यवाद करने चाहें।
3: यातायात के नियमों को समझें और समझाएं यह विषय पर क्षेत्र संकलित बातचीत अल्लाह हम सुने। अब कार्यक्रम में मनाखिल का बनू और बात करनू पोषण है की दगड़े स्वस्थ जीवन शैली जीना के लीजिए हम सबन के अपू स्वास्थ्य ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये के लीजिए हमन का ध्यान देना चाहिए कि हम जो ला खान पीन अपन थाई में भान में शामिल करूँ वो स्वास्थ्यवर्धक हो और पौष्टिकता है भरपूर हो। मौसम उसी तो गर्मी दिन आएगी लेकिन मौसम उतार चढ़ाव को आपू और हम सब देखने लग रही लेकिन छन तो गर्मी का दिन तो दगड़ियो गर्मी के दिनों में शरीर में पानी कमी नहीं हो और यह बात का ध्यान हम सबन के देना चाहिए उसे तो हर मौसम में जरूरी है लेकिन यह मौसम में और ला ज़्यादा है तो यह के लिए हम अपने खाने में खीरा गें जरूर शामिल करो। यह स्वास्थ्य के लिए भल छो और इसमें भरपूर मात्रा में पानी हो। अगर हम खीरा बात करूँ तो यह में पानी तो नहीं छू लेकिन यह के लिए एक हम कत के रूप में अपने खाने में शामिल कर सकते हैं चाहो तो सलादा रूप में या फिर हम यह जूस बड़े बेर यह सलाद कस के लो एक हमको आजकल आपको भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहूँ और निरोगी रहूँ। बात छोड़ छोड़ चुन लेकिन हम एक आपको दिनचर्या में जरूर शामिल करो। अब आगे का बढ़ो थोड़ा सुन लो या गीत

अभी बहनें सुन रही थी अपन, हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे और 1:05 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री

जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। चमोली जिले में स्थानीय किसानों की उपज अब सीधे आईटीबीपी को भेजी जाएगी। ज्योतिर्मठ के बड़गांव के काश्तकारों के समूह से सब्जी के विपणन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। और राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय स्थित जिला दिव्यांग व पुनर्वास केंद्र से दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिल रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे अन्य सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। ये केंद्र फोरम ऑफ रेगुलेटर्स और आईआईटी रुड़की की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्र के नियामकीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और भविष्य के अनुरूप बनाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ती बिजली मांग, नवीनीकरणीय और ऊर्जा के तेजी से विस्तार, डिजिटल तकनीकों के

0: सस्ते उपयोग और ऊर्जा बाजारों में हो रहे बदलावों को देखते हुए मजबूत नियामकीय ढांचे की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि ये देश में इस प्रकार का दूसरा केंद्र है। इससे पहले IIT दिल्ली में भी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा चुका है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के अध्यक्ष जिष्णु बरुआ ने बताया कि ये केंद्र देश में नियामकीय क्षमता निर्माण का प्रमुख संस्थान बनेगा और उच्च गुणवत्ता वाले शोध व ज्ञान संसाधनों के माध्यम से भारत की ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि ये केंद्र अकादमिक जगत, नीति निर्माताओं, उद्योग और नियामकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जिससे ऊर्जा संक्रमण और अवसंरचना प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में मदद मिलेगी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में छापेमारी अभियान चलाया। अपर जिलाधिकारी विवेक राय और उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने शहर के विभिन्न मोटर ड्राइविंग स्कूलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दो मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से मोटर ड्राइविंग स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बिना उचित प्रशिक्षण के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: जो भी ऐसे मोटी ट्रेनिंग स्कूल पाए गए हैं, उसको तत्काल प्रभाव से उनको नोटिस दे करके उनका जो है सस्पेंड कर दिया गया। उनके यहाँ प्रक्रिया तभी अब आगे चलेगी जब उनके द्वारा सारी व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएगी। आप लोगों के चैनल के माध्यम से जिन तक आवाज मेरी पहुंच रही है, उनको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि RTO ऑफिस में हमारे ऑफिसर्स पर्याप्त संख्या में है। कोई समस्या आती है उनसे मिलें, बिचौलियों से सावधान रहें, उनसे न मिलें।
0: भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा कार्यालय की ओर से देहरादून में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 150 से अधिक ज्वेलर्स ने भाग लिया। इस दौरान BIS के निदेशक व प्रमुख हेमंत आड़े ने BIS हॉलमार्किंग योजना में हुए नवीनतम विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं अब BIS केयर ऐप के माध्यम से हॉलमार्क आभूषणों का विवरण, आभूषण का वजन और आभूषण का फोटो भी सत्यापित कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को और अधिक मजबूती मिलेगी।
2: भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय ने ज्वेलर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सैकड़ों ज्वेलर्स शामिल हुए और उन्हें हॉलमार्किंग, गोल्ड हॉलमार्किंग, स्वर्ण हॉलमार्किंग के विषय में जानकारी दी गई और उनकी जो परेशानियां हैं हॉलमार्किंग के संबंध में उस पर हमने चर्चा की। और जो सिल्वर हॉलमार्किंग जो मैंडेटरी होने जा रहा है, अनिवार्य होने जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की गई।
0: कार्यक्रम में BIS अधिकारियों और ज्वेलर्स के बीच संवादात्मक चर्चा के दौरान हॉलमार्किंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और उपभोक्ता हितैषी बनाने पर विचार विमर्श किया गया।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: चमोली जिले में स्थानीय किसानों की उपज अब सीधे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP को भेजी जाएगी। जिले के काश्तकारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखंड और औद्यानिक परिषद और ITBP के बीच गत 1 अप्रैल को स्थानीय काश्तकारों से सब्जी खरीद के लिए अनुबंध किया गया। एक
4: समझौते के तहत ज्योतिर्मठ के बाड़ा गांव के काश्तकारों के समूह से सब्जी विपणन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने पहली खेप लेकर जा रहे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 50 किलोग्राम मटर, 8 किलोग्राम लहसुन, 50 किलोग्राम राई, 5 किलोग्राम धनिया और 5 किलोग्राम चुकंदर की आपूर्ति की गई, जिससे काश्तकारों को लगभग 9,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। स्थानीय काश्तकार मोहन सिंह कमदी और सुखदेव सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार और औद्यानिक परिषद की यह पहल किसानों की आय मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक सोमेश भंडारी ने बताया कि समझौते के तहत क्षेत्र के कृषक संगठनों को सब्जी विपणन व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस व्यवस्था से स्थानीय किसानों को अपनी उपज का सीधा बाजार उपलब्ध होगा। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही उन्हें विपणन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय स्थित जिला दिव्यांग व पुनर्वास केंद्र से दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिल रही है।

0: जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि दिव्यांग व पुनर्वास केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र में अब तक 600 से अधिक UDID कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि 600 नए दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 250 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया जाया।
1: जनपद देहरादून में पहली बार DM मोदी के निर्देशों के क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। DDRC का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। एक वर्ष में जब से हमारा गांधी शताब्दी DDRC चला है, एक वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 600 नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड बने हैं और 250 नवीनीकृत हुए हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र।
0: प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना है। राज्य ने पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. CS तोमर ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश आंधी और गर्जन के आसार हैं।
2: हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हमारे को लगभग जो है सारे पर्वतीय जो हमारे जिले वहाँ देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में जो है ये जो है हल्की फुल्की कहीं पे हो सकता है। बाकी फिर 12 और 13 तारीख में जो ऊपर के हमारे 5 नॉर्थ के जो जनपद है वहाँ पे हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिल सकती है 12 और 13 तारीख में। बाकी जगह पे जो है कहीं कहीं देखने को मिल सकती है हल्की मध्यम दर्जे की बारिश और 13 और 14 तारीख को भी लगभग सिमिलर सिचुएशन रहेगी, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने IIT रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। चमोली जिले में स्थानीय किसानों की उपज अब सीधे ITBP को भेजी जाएगी। ज्योतिर्मठ के बड़ा गांव के काश्तकारों के समूह से सब्जी के विपणन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय स्थित जिला दिव्यांग व पुनर्वास केंद्र से दिव्यांग जनों को बड़ी राहत मिल रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं गुलजार के नगमे से, आवाज जगजीत सिंह की।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: अभिजीत के गए इस नगमे के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: दृष्टिदान आज प्रस्तुत है गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की बांग्ला कहानी का श्री बी एस भटनागर द्वारा किया गया हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनिए नाटक दृष्टिदान।

0: बालिका कुमुदनी का विवाह 8 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले ही हो गया था। 14 वर्ष पूरे होने के पहले उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया। स्वयं बच तो गई, पर शरीर की दुर्बलता या मन के दुख या जिस कारण से भी हो, कुमुदनी को नेत्र रोग हो गया। पति अविनाश डॉक्टरी पढ़ रहे थे, नई विद्या सीखने के उत्साह में चिकित्सा आरंभ कर दी।
1: कुमु, देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों से पानी बहना कम नहीं हो रहा है।
2: दवा की बूंदे मैंने 3 बार डाली थी तुम्हारे कॉलेज से आने के पहले।
1: मुझे लगता है दवा बदल कर देखो, एक नई दवा मार्केट में आई है, मैं आते हुए उसे ले भी आया हूँ। वो ड्रॉपर कहाँ है?
2: वही दवा के पास रखा है आले में।
1: हो सकता है यहाँ आले की मिट्टी से ड्रॉपर रोग को ठीक ना होने देता हो। अभी तो इसे धोकर तुम्हारी आंखों में दवा डाल दो।
2: जैसे तुम ठीक समझो।
1: हाँ, अच्छा जरा मुंह पर उठाओ। हाँ ठीक है, दूसरी आंख करो। हाँ ठीक। कौन हो सकता है इस वक्त?
3: भाई साहब नमस्कार।
4: नमस्कार,
3: आइए आ जाइए।
4: नमस्कार भाई। ओ, ये तुम आंखें क्यों बंद किए बैठे हो कुमो?
3: वो मैंने अभी भी ड्रॉपर से दवा डाली है भाई साहब।
4: कुछ फायदा है?
3: कोई खास तो नहीं, लेकिन
4: भाई इलाज किसका चल रहा है विनाश?
3: मैं खुद ही कर रहा हूँ भाई साहब। पानी बहने में कमी नहीं हुई थी, इसलिए आज मैंने दवा बदल दी है।
4: तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना, ऐसे तो कमू की आंखें जाती ना रहे।
3: आप भी क्या बात करते हैं भाई साहब, अच्छा डॉक्टर आकर कोई नया इलाज कर देगा क्या? दवाएं तो सब मेरी जानी हुई है।
4: तुम दवाएं तो जानते हो अविनाश, पर शायद तुम अभी तक मर्ज नहीं पकड़ पाए हो। तुम्हारे पास इल्म तो है मगर तजर्बा नहीं है अभी।
3: देखिए भाई साहब, आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ।

0: मैं किसी कानूनी मामले में राय दे सकता हूँ क्या?
1: मैं इलाज के बारे में राय नहीं दे रहा हूँ अविनाश, कि ठीक चल रहा है या नहीं। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखा लो, वो तकलीफ की जड़ पहचान कर इलाज कर सकेगा। और फिर बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा है, नीम हकीम खतरा है जान। देखो बुरा मत मानना, अपनी तरफ से तो मैंने तुम्हें सही सलाह देने की कोशिश की है। और कुमु
2: जी,
1: क्या हाल है तुम्हारा?
2: ठीक हूँ भैया।
1: भगवान करे तुम्हारी आंखें जल्दी ठीक हो जाएं। अच्छा मैं अब चलता हूँ।
2: अच्छा भैया, नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: खुश रहो। देखा कुमु, तुम्हारे भैया समझते हैं कि इलाज ठीक नहीं है। अरे मैं क्या अस्पताल में रोज छक मारने जाता हूँ? अब तक हजारों आंख के रोगियों का इलाज कर चुका हूं मैं, मुझे तजुर्बा नहीं है। मैं मर्ज की जड़ नहीं पकड़ पाया हूं। लोग कैसे बोलते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। अरे पौने नौ, 9 बजे तो मेरी पहली क्लास है, अब तो दौड़ना पड़ेगा। वो सुनो, वो दिन में 3 बार ड्रॉपर से दवा डाल लेना, और शाम को मैं 2-4 नए ड्रॉपर लेता आऊंगा। दरवाजा बंद कर लो।
2: जी राजाओं में आपस में लड़ाई हो, मारे जाते हैं गरीब बेचारे। अब कहा सुनी हो गई इनमें और भैया में, परेशानी पड़ेगी मेरी। भैया को मेरी तरफ से चिंता ठीक ही है, पर जब मैं दान में दी जा चुकी, तब मेरी खातिर कहा सुनी करने की जरूरत क्या? अब तो सब कुछ मेरे पति का है।

0: तुम
1: डॉक्टर सान्याल के इलाज से तुम ठीक हो जाओगे।
2: पर भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज तो तुम डॉक्टर को ले आए थे, अब दोबारा मत लाना।
1: हा?
2: ये मेरा हर तरह से ध्यान कर रहे हैं, नौकर चाकर के काम भी इन्होंने अपने ऊपर ले रखे हैं। अगर इन्हें पता लगा कि मैं इनकी चोरी से किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करा रही हूँ तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा।
1: ठीक है, डॉक्टर साहब को अब यहाँ नहीं लाऊंगा, पर तुम उनकी बताई दवाएं लेती रहना, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना।
2: हा? जी हाँ।
1: अच्छा मैं अब जाऊंगा, कॉलेज में एक सेमिनार है।
2: अच्छा भैया नमस्कार।
1: सुखी रहो।
2: इनसे छिपाकर कुछ भी करना, इनसे विश्वासघात करना है, नहीं नहीं मैं ये दवाई नहीं लूंगी, उनके कॉलेज से आने के पहले ही आंगन के कुएं में फेंक दूंगी। ये कितने ध्यान से मेरा इलाज कर रहे हैं, मेरी टहल कर रहे हैं, इनके इलाज में बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

0: कुमो, तुम कितना कष्ट उठा रही हो देखकर मेरी चिंता बढ़ती जा रही है।
1: ऐसा क्यों कहते हो? मैं ठीक हो रही हूँ। आँख से पानी बहना बिल्कुल बंद है रात से। देखो ना, आँखें बिल्कुल सूखी पड़ी हैं।
0: आँखें सूखी हैं, इसी से और चिंता बढ़ती है। आँख सूख कर दृष्टि ही लोप होने का डर है। तुम्हें धुंधला दिखाई देने लगा है, सर में दर्द है।
1: सुनो, एक बात कहूँ।
0: क्या?
1: याद है उस दिन भैया ने डॉक्टर बुलाने को कहा था? सोन का मन रखने के लिए एक बार बुला लो ना। इलाज तो तुम्हारा ही रहेगा, एक डॉक्टर और साथ रहेगा तो क्या हर्ज है? भैया का पारा भी नीचे आ जाएगा।
0: तुम ठीक कहती हो।

0: देखता हूँ झुलसती धूप में कौन आया है।
1: आइए भाई साहब, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आइए इधर आ जाइए।
0: ठीक।
1: अगर इजाजत दें तो मैं नहा हूँ।
0: हाँ,
1: आप तब तक अपनी बहन से बात कीजिए।
0: ठीक।
3: नमस्कार भैया।
0: सुखी रहो कुम्भ। सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है?
3: वो ऐसा हुआ भैया कि तुम्हारे डॉक्टर के बताए हुए इलाज से मेरी आंखें खूब अच्छी हो रही थी। लेकिन एक दिन भूल से पीने की दवा आंखों में डाल ली।
0: क्या?
3: बस तब से आंखें बहुत तकलीफ दे रही हैं। ये कह रहे हैं कि आंखों का ऑपरेशन होगा।
0: और मैं सोच रहा था तुम्हारे मियाँ जी का इलाज चल रहा है, इसीलिए मैं इतने दिन नहीं आया।
3: नहीं नहीं, उनका इलाज नहीं था, तुम्हारे वाले डॉक्टर का इलाज किया मैंने इतने दिन। उन्हें बताया नहीं कि कहीं वो गुस्सा ना करे।
0: उस दिन उसने मेरी बात लगने ही नहीं दी। मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखाने को कहा तो बिगड़ उठा।
3: अभी आज ही तो अंग्रेज डॉक्टर को बुलाकर मेरी आंखें जचवाई थी इन्होंने।
0: अंग्रेज डॉक्टर?
1: हाँ भाई साहब, आपकी बहन की आंखें हर तरह के इलाज के बावजूद दिन दिन खराब होती गई। आपकी सलाह मानकर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लिया होता तो इनकी आंखों को इतना नुकसान ना होता। आखिर आज मिशन हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ को बुलाकर दिखाया।
0: क्या कहा उसने?
1: आंखों के ऑपरेशन की राय दी है।
0: गनीमत है, तुमने वक्त रहते सही कदम उठा लिया।
1: ऑपरेशन से आंखें ठीक होने का चांस तो है।
0: ऑपरेशन कहाँ होगा?
1: वहीं मिशन हॉस्पिटल में ही।
0: देखो, ऑपरेशन के दिन की खबर मुझे जरूर करवा देना।
1: जरूर भाई साहब।
0: ठीक है, अब मैं चलूंगा। कुमु।
3: जी भैया।
0: भगवान तुम्हारी आंखों को सही सलामत रखे, यही दुआ है।
3: नमस्कार भैया।
0: सुखी रहो।

0: ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब पट्टी खोली गई, एक आंख की दृष्टि लोप हो चुकी थी। कुछ समय बाद दूसरी आंख ने भी जवाब दे दिया।
1: कुमो, तुम्हारी दोनों आंखें मैंने ही नष्ट की है।
2: तो क्या हुआ, अच्छा किया अपनी चीज वापस ले ली।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं कुमो, नहीं।
2: अच्छा ऐसे सोच कर देखो, अगर किसी दूसरे डॉक्टर के इलाज से मेरी आंखें खराब हुई होती तो मुझे उससे क्या सांत्वना मिलती। होनी अगर अटल होती है तो फिर मेरी आंखों को कोई बचा नहीं सकता था। ये आंखें तुम्हारे हाथों गई हैं, यही मेरे अंधे होने का एकमात्र सुख है।
1: कुमु, अपनी मूर्खता से जो तुम्हारा नुकसान मैंने किया है उसे लौटा तो नहीं सकता, लेकिन जहां तक मुझसे बन पड़ेगा तुम्हारी आंखों की कमी को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ साथ रहूंगा।
2: ये बेकार की बात है, तुम अपनी गृहस्थी को एक अंधे का अस्पताल बनाकर रखोगे, ये मैं किसी तरह भी नहीं होने दूंगी। तुम्हें दूसरी शादी करनी ही होगी।
1: नहीं, मैं मूर्ख हूं, घमंडी हूं, लेकिन पाखंडी नहीं हूं। अपने हाथों से तुम्हें अंधा कर दिया है तो उसी कमी की वजह से तुम्हें छोड़कर अगर दूसरी किसी औरत को ब्याह लूं तो भगवान कसम मैं बड़े से बड़े पाप का भागी बनूं।
2: बस करो, ऐसी जबरदस्त कसम क्यों खाई। दूसरा ब्याह मैंने तुम्हारे सुख के लिए कहा था क्या? अपनी गरज के लिए कहा था? आंखों के ना होने से जो तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकती वो सौत से करवाती।
1: काम तो नौकरानी से भी चल सकता है। काम की सहूलत के लिए नौकरानी से शादी करके उसे क्या मैं अपनी इस देवी के साथ एक आसन पर बिठा सकता हूँ?
2: ये देवी पद देकर मुझे इतना ऊंचा ना उठाओ कि अगर कभी उस पद से गिरूं तो चूर चूर ना हो जाऊं।
1: सच को तुम देवी हो, देवी।

डॉक्टरी पास करके कुमुदनी का पति उसे लेकर मुफस्सिल क्षेत्र में हाशिमपुर कस्बे चला गया। डॉक्टरी चमक उठी। डॉक्टर को अब पैसा जुटाने की लिप्स

0: सा और बाजारू रूप रंग के आकर्षण ने गृहस्थी की ओर से प्रायः उदासीन कर दिया। एक दिन डॉक्टर साहब के यहाँ एक सवाली आ गया।
1: डॉक्टर साहब, मेरी नातिन बहुत बीमार है, अगर आप देख लेते।
2: है फुर्सत मुझे मरने की? कह दिया देख लेते।
1: बेटा, मैं गरीब हूँ, लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करेंगे, चले चलते।
2: अल्लाह जो करेंगे सर, उसी से तो मेरा काम नहीं चलेगा। तुम क्या करोगे पहले वो तो सुनो।
3: ईश्वर ने मुझे अंधा किया, बहरा भी क्यों नहीं किया?
1: तो फिर आपसे कोई उम्मीद न रखूं डॉक्टर साहब, आप तो कलाम भी नहीं करते।
2: फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है।
1: या अल्लाह, हत्या या सर।
4: आया आया आया
5: जी मालकिन।
3: जल्दी से बाहर जा, एक बूढ़ा अभी अभी दवाखाने से नीचे उतरा है, उसे मेरे कमरे की खिड़की पर बुला ला।
5: जी अच्छा मालकिन।
3: देखते देखते इनका सब कुछ बदल गया। हम दोनों के रास्ते जो कभी एक थे, कितने अलग अलग हो गए।
1: यहाँ किसी ने बुलाया मुझे।
3: पापा।
1: क्या बात है बीबी?
3: तुम्हारी नातिन के लिए डॉक्टर का कुछ खर्च दे रही हूँ।
1: ये क्या?
3: तुम मेरे पति की खैरियत के लिए दुआ करो और अगली गली से डॉक्टर हरीश को लिवा ले जाओ।
1: अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बीबी। या अल्लाह, तू बड़ा कारसाज है।
2: आया आया, उसल खाने में गर्म पानी रख दिया है?
5: जी हाँ साहब।
2: कुमू, मैं बस अभी आया, तुम खाना परसवाओ। ए, क्या बात है, तुम दुखी दिख रही हो।
3: कितने दिन से तुमसे कुछ कहने की सोच रही थी।
2: अरे कहो ना, क्या हुआ?
3: मैं समझ नहीं पाती कि कैसे कहूँ। अपने दिल की बात तुम्हें समझा कर कह भी सकूंगी या नहीं?
2: अरे पहेली मत भुजवाओ, कह डालो ना क्या बात है।
3: ये तो तुम भी अपने मन में समझते होगे कि हम दोनों ने जैसे एक होकर जिंदगी शुरू की थी, आज वो वैसी नहीं है।
2: अरे तब्दीली तो दुनिया का कायदा है।
3: रुपए पैसे में, रूप रंग और जवानी में, सभी में तब्दीली होती है। लेकिन लेकिन क्या कोई हमेशा एक सी रहने वाली चीज नहीं है?
2: देखो, दूसरी औरतें जिंदगी की कमियों की वजह से दुखी रहती हैं। किसी का पति कमाता नहीं, किसी का पति उसे मोहब्बत नहीं करता। एक तुम हो, सब कुछ होते हुए अपने लिए झूठ मूठ का दुख संजोए बैठी हो।
3: अपने मन से पूछ कर देखो, मेरा दुख सच्चा है या झूठा।
2: ओ, तुम फिजूल की बातों में अपना दिमाग खराब करती हो। चलो खाना परसवाओ, मैं अभी आया।
6: दरवाजा खोलो। अविनाश, अरे कोई है?
2: अरे ये तो गांव से बुआ जी आ गई।
7: नमस्कार
8: बुआ जी।
9: पैरों पड़ती।
7: सदा सुहागन रहो बहू, सदा सुहागन रहो। और बहू रानी सुनो, तुम तो दुर्भाग्य से आंखें खो बैठी हो, अब अपना विनाश अंधी औरत के सहारे घर गृहस्थी कैसे चलाएगा? इसका दूसरा ब्याह करा दो ना।
2: बुआ जी ये क्या कह रही हो?
7: क्यों, अरे कुछ बेजा कह रही हूँ? अच्छा बहू रानी, तुम ही बताओ तो बेटी।
9: वाह बुआ जी वाह, तुम भी किससे सलाह मांग रही हो? भला जिसकी गांठ काटनी होती है, क्या उससे कोई सलाह लेकर उसकी गांठ काटता है?
7: हाँ हाँ बेटी, बात तो ठीक है। तो फिर तेरे साथ अकेले में सलाह करूंगी, क्या राय है अविनाश?
2: कोई राय नहीं है बुआ जी।
7: एक बात बता दो बहू रानी।
9: हाँ बुआ जी।
7: कुलीन घर की लड़की की जितनी ज्यादा सौतीने होती हैं, उसके पति का गौरव उतना ही बढ़ता है।
2: देखो बुआ जी, सौतिन वोतिन की बात छोड़ो, ये आंखों से देख नहीं पाती। अगर ऐसी कोई एक होती किसी भले घर की लड़की जो हर समय इनके साथ रह सकती, तो मैं बेफिक्र हो जाता।
7: अरे कमी क्या है, मेरे जेठ की ही एक लड़की है, सुंदर लक्ष्मी है, लक्ष्मी बयान जो उम्र की है, अच्छा बर खोज रहे हैं, कोई तुम्हारे जैसा कुलीन मिल जाए तो अभी ब्याह दे।
2: फिर वही बुआ, ब्याह की बात कौन कर रहा है?
7: कैसी बातें करते हो, ब्याह बिना भले घर की लड़की तुम्हारे घर यूं ही पड़ी रहेगी।

0: तो बुआ जी तुम हमारी मदद नहीं करना चाहती, मैं ये समझ लूं?
1: अरे नहीं रे, जब तू इतना कह रहा है तब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
0: ये बात हुई ना बुआ जी।

0: बहुरानी, ये है मेरे जेठ की लड़की हेमांगनी। अरे जिसकी बात मैंने उस दिन की थी ना। और हेमू, ये तुम्हारी दीदी हैं, इनको प्रणाम करो।
1: प्रणाम दीदी। खुश रहो।
0: अरे लो, अविनाश भी आ गया है। अरे अनजान लड़की को देख कहाँ भागा जा रहा है रे, इधर आ इधर आ।
2: ये कौन है?
0: मेरे जेठ की लड़की हेमांगनी है, मैंने उस दिन इसी की बात तो की थी।
2: कब आई है?
0: अभी अभी मुकद्दन जी के साथ।
2: तो इनकी खातिरदारी करो ना।
0: उसके लिए तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है रे। हीमू, तुम बहुरानी के साथ जाओ।
1: अच्छा काकी। अरे ये मेरे मुंह पर हाथ क्यों फेर रही हो? मेरा भूत उतार रही हो क्या?
3: मैं तुम्हें देख रही हूँ बहन।
1: देख रही हो? मैं क्या तुम्हारे बागीचे की सेम या बैंगन हूँ जो हाथ फेर कर देख रही हो कि कितनी बड़ी हो गई हो?
3: बहन, मैं अंधी जो हूँ।
1: ओह, इसी से काकी को यहाँ बुलवाया है?
3: नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलवाया, वो अपने आप आई हैं।
1: मेहरबानी करके, तब तो ये दयामयी जल्दी हिलने वाली नहीं है। लेकिन पिताजी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा?
0: अरे क्या बातें हो रही हैं घुल मिल के।
1: काकी बताओ तो, हम घर कब लौटेंगे?
0: अरे मैया री, आते ही जाऊं जाऊं करने लगी, ऐसी चंचल लड़की कभी नहीं देखी।
1: तुम्हारा तो ये घर ठहरा, जितने दिन चाहो रहो, पर मैं चली जाऊंगी। क्यों बहन, तुम क्या कहती हो?
3: नहीं नहीं, अभी जाकर क्या करोगी?
0: हीमू, मैं तुझे नहाने जाने के लिए कहने आई थी, सफर के कपड़े बदलो चलो।
1: अच्छा काकी। दीदी अभी आ जाऊंगी।
3: अच्छा।

0: काकी।
1: क्या है इमी, तुम घर कब चलोगी? तुझे जल्दी है घर जाने की?
0: हाँ काकी, तुम नहीं चलती तो मैं अपने कहवर दादा के साथ चली जाऊंगी।
1: अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, कल मैं भी चलूंगी, एक ही साथ चलेंगे।
0: ठीक है काकी।
1: अच्छा इधर देख इमी।
0: क्या है?
1: मेरे अविनाश ने तेरे लिए कैसी मोती जड़ी अंगूठी खरीदी है, ये ले ये ले।
0: देखो काकी, मैं कैसा अच्छा निशाना लगा सकती हूँ। ए,
1: ए, अरे रे हीमू, ये क्या किया तूने? अरे अंगूठी पोखर में फेंक दी।
0: सुन समझ रही हो ना सब कुछ बहन?
1: अरे बहुरानी, ये हीमू कितनी चंचल है, कभी कभी कैसी नादानी कर जाती है। पर बहुरानी, तुमसे मेरी प्रार्थना है, मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, इसके इस लड़कपन की बात तुम अविनाश को मत बताना, उसके मन को दुख होगा। तुम्हें मेरे सर की कसम बहुरानी।
0: बुआ जी, अब और कुछ ना कहें, मैं कोई भी बात इनसे नहीं कहूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ।
1: फिर मैं निश्चिंत मन से कल जा सकूंगी।

0: कुमुन कुमुन सो रही हो?
1: कौन? ओ, आप कहो कैसे आए?
0: सुनो, वो दूर एक जगह से मेरा बुलावा आया है। कल पौ फटते ही मुझे चल देना पड़ेगा। हो सकता है लौटने में 2-3 दिन की देर हो जाए।
1: देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं।
0: अब मैंने क्या झूठ कहा?
1: यही कि डॉक्टर के लिए तुम्हें बुलावा आया है।
0: तो और क्या?
1: तुम अपना ब्याह करने जा रहे हो, मुझे सब मालूम है। नौकरानी ने बताया है घाट पर बड़ी सजधज से नौकाएं तैयार की गई हैं। तो दूसरा ब्याह करने जा रहे हो ना? कुछ तो जवाब दो। कहते क्यों नहीं, हाँ दूसरा ब्याह करने जा रहा हूं। सुन लो, तुम जा नहीं सकते।

0: अपना वचन भगवान की कसम खाकर दिया था वो भूल रहे हो। मैं तुम्हें उस घोर पाप से बचाऊंगी, उस महापाप से अगर मैं तुम्हें ना बचा सकूं तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी कैसी? तुम्हें मेरे सर की सौगंध है, बताओ बताओ, सच सच बताओ।
1: मैं तुमसे डरता हूं कुम, तुम मेरे लिए एक देवी के समान हो जिसके समीप आने मुझे डर लगता है। तुमको साथ लेकर मैं 24 घंटे की गृहस्थी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं एक ऐसी साधारण औरत जिसके साथ बकचक कर सकूं, गुस्सा कर सकूं, मान मनोबल कर सकूं, जिसे गहने बनवा दूं, जिसे मैं
0: बस बस, तुम मेरे भीतर झांक कर देखो, मैं एक साधारण औरत हूं। मेरे मन में नहीं प्यारा बच्ची के अलावा और कुछ नहीं है। मैं विश्वास करना चाहती हूँ, तुम्हारा आश्रय चाहती हूँ, पूजा करना चाहती हूँ तुम्हारी, मुझे अपने पैरों में चके तो।
1: क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप से मजबूर हूँ कुमू, तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
0: तो ये भी सुन लो, जाओ जहाँ जाते हो, करो जो करना चाहते हो, पर इतना कह देती हूँ, अगर मैं सती हूँ तो भगवान साक्षी है, तुम किसी भी तरह से अपना वचन नहीं तोड़ सकोगे। तुम्हारे उस महापाप से पहले या तो मैं विधवा हो जाऊंगी या फिर हेमांगिनी जिंदा रहेगी। जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ।

0: Comment? Comment?
1: अरे ये क्या, घर में कोई नहीं है?
2: मैं भीतर के कमरे में देखती हूँ। दीदी दीदी, अरे कमरा तो खाली है।
0: कमा कमा,
1: यहाँ दवाखाने में भी नहीं।
2: ये है दीदी, पूजा घर में बेहोश पड़ी है।
1: हाँ?
2: सुनिए हाँ? आप थोड़ा सा पानी ले आइए।
1: हाँ, अभी।
2: दीदी होश में आओ। दीदी दीदी
1: ये लो पानी।
2: लाओ। दीदी होश में आओ। दीदी दीदी दीदी,
3: कौन? मैं कहाँ हूँ?
2: मैं हूँ दीदी हेमू, तुम मेरी गोद में लेटी हुई हो दीदी।
3: ये तुम्हारी फेवा की साड़ी, ये कहने?
2: हाँ दीदी।
3: तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी।
2: दीदी मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेने आई हूँ। प्रणाम दीदी, पैरों पड़ती हूँ।
3: सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो।
2: केवल आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा दीदी, तुम जैसी सती औरत के हाथों हम दोनों को तुम्हारा वरदान मिलना चाहिए। अरे आप वहाँ कब तक खड़े रहेंगे, इधर आइए ना।
1: अच्छी है कुमुम।
3: अरे भैया तुम?
2: भैया कैसे, ये तो तुम्हारे छोटे बहनों ही है दीदी।
1: क्यों, तुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा तोड़कर विवाह कर लिया?
3: मैं कितनी खुश हूँ मैं कह नहीं सकती। आपने इस विवाह से हम सबका उद्धार कर दिया।
1: कुमु
3: भैया,
1: कुमु
3: भैया।

0: कौन?
1: मैं हूँ कुमु। क्षणिक मोह में पढ़कर मैं अपना विनाश करने जा रहा था, तुम्हारे भैया ने मुझे बचा लिया
0: जी।
1: इन कई दिनों में मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कुमु, तुम्हें छोड़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं है, तुम ही मेरी देवी हो।
0: नहीं नहीं मुझे देवी बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर की गृहिणी हूं, मैं सिर्फ एक साधारण औरत हूं।
1: कुमु, मेरा एक अनुरोध तुम्हें न पड़ेगा।
0: वो क्या?
1: अपना देवता कहकर मुझे कभी लज्जित मत करना।

0: दृष्टिदान नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की बांग्ला कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री बी एस भटनागर, निर्देशक सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायिका अंजलि शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, सुरेंद्र सेठी, राजीव त्यागी, एच सी पांडे, मोनिका शर्मा, कमला कुमारी चोपड़ा और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं सुरेश प्रसाद के गाए कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और जब सुनिए गढ़वाली लोकगीत कलाकार हैं भगवती प्रसाद पोखरियाल।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने

0: और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान

0: पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक

0: पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रम

0: और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण
2: FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों हेतु मक्का की उन्नत प्रजातियां और वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार खुलबे।
3: मक्का उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण फसल है खरीफ के मौसम की, तथा उत्तराखंड में इसकी खेती लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। इसकी खेती मुख्यतः असिंचित अवस्था में की जाती है। आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में फसल के पकने तक तापमान में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा अवधि वाली किस्मों के पकने में कठिनाई आती है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अगेती मक्का की खेती की जाती है। अगेती का अभिप्राय फसल के पकने से है। अगेती मक्का 85 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मक्का की खेती मुख्यतः खरीफ के मौसम में की जाती है, परंतु तलहटी व मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती जायद में भी की जाती है। खरीफ में इसकी बुआई जून में की जाती है तथा सितंबर तक फसल पककर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार जायद के मौसम में फसल को फरवरी में बोया जाता है और मई तक फसल पककर तैयार हो जाती है। इन क्षेत्रों में मक्का की खेती दानों के लिए, हरे भुट्टे व चारे के लिए की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मक्का मुख्यतः घरेलू उपभोग हेतु उपयोग होता है, परंतु पर्यटन स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में किसान हरे भुट्टों से भी अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं। पिछले दशक में मैदानी क्षेत्रों में मक्का आधारित उद्योगों की स्थापना से मक्का की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके लिए मक्का के उत्पादन व उत्पादकता में लगभग 2 गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है, जिसे मक्का की उन्नत किस्मों तथा उन्नत शस्य क्रियाओं को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। मक्का की प्रजातियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है मुक्त परागित प्रजातियां, जिनमें स्थानीय किस्में तथा उन्नत संकुल व संश्लिष्ट प्रजातियां सम्मिलित हैं। दूसरा प्रकार है संकर अथवा हाइब्रिड प्रजातियां, जिनमें एकल संकर, द्विसंकर व त्रिसंकर प्रजातियां सम्मिलित हैं। संकर प्रजातियों में मुक्त परागित प्रजातियों की तुलना में अधिक उपज के साथ साथ विभिन्न पौध गुणों के लिए अधिक समानता होती है, परंतु किसानों को हर बार संकर प्रजातियों के नए बीज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें निजी बीज संस्थानों अथवा सरकारी बीज उत्पादन संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में संकर मक्का प्रजातियों का उत्पादन कृषकों द्वारा स्वयं नहीं किया जा सकता, यानी जो किसान हैं वो खुद अपने स्तर पर इन संकर प्रजातियों का बीज पैदा नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत मुक्त परागित प्रजातियों की उपज कम होती है, परंतु कृषक थोड़ी सावधानी बरतकर इनका बीज स्वयं पैदा कर अपनी अगली फसल उगाने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के निचले हिस्सों में उन्नत किस्में उगाई जा रही हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी अधिकतर स्थानीय किस्में ही प्रचलित हैं। ये किस्में अधिक ऊँचे बीज दर से निम्न उर्वरता वाली भूमि में बिना रासायनिक खाद के प्रयोग से उगाई जाती हैं। इन्हें सामान्यतः बीज छिड़क कर या हल के पीछे बोया जाता है। ये सभी कारक पौधों में बांझपन बढ़ाते हैं व भुट्टे के आकार में भी कमी लाते हैं। स्थानीय किस्मों की न केवल उपज क्षमता कम है, बल्कि इन पर कीट व बीमारियों का प्रकोप भी अधिक होता है। इनके स्थान पर यदि उपयुक्त संकर किस्म उगाई जाती है व उन्नत फसल उत्पादन पद्धतियों का पालन किया जाता है, तो उपज में लगभग 1.5 गुना तक की वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा सामान्य मक्का की संकर प्रजातियां, जैसे कि विवेक संकर मक्का 45, विवेक संकर मक्का 47, विवेक संकर मक्का 53, केंद्रीय मक्का VL 55, VL संकर मक्का 57 आदि प्रजातियां विकसित की।

ये प्रजातियाँ 85 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं तथा इनसे 55 से 65 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इन प्रजातियों में मक्का की प्रमुख बीमारियां जैसे कि टर्सिकम पर्णझोलसा व मेडिस पर्णझोलसा के प्रति सहिष्णुता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त विवेक शंकर मक्का 45 व विवेक शंकर मक्का 53 में स्टेग्रीन गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के पक जाने पर भी पौधा हरा रहता है, जिससे मवेशियों के लिए भरपूर चारा उपलब्ध रहता है। सामान्य मक्का के अलावा संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त क्यूपियम मक्का की संकर प्रजातियों का भी विकास किया गया है, जिससे भरपूर पोषण प्राप्त किया जा सकता है। क्यूपियम या क्वालिटी प्रोटीन मेज मक्का का ही एक प्रकार है, जिसमें प्रोटीन की गुणवत्ता सामान्य मक्का से लगभग दुगनी होती है, जिस कारण यह मनुष्यों व पशुधन दोनों के लिए ही पोषण का एक उत्तम स्रोत है। संस्थान द्वारा विकसित क्यूपियम मक्का की प्रजातियां VL QPM 45, VL QPMH 59, VL QPMH 61 व VL QPMH 63 हैं। इनके अतिरिक्त संस्थान द्वारा एक उच्च प्रोविटामिन ए संकर प्रजाति का भी विकास किया गया है, जिसका नाम VL Vita है, जिसमें प्रोविटामिन ए की मात्रा सामान्य मक्का से दुगनी है। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में मक्का की बुआई जून प्रारंभ से जून मध्य तक की जाती है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मई के अंत से जून का मध्य तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मई के दूसरे पखवाड़े में की जाती है। मक्का की बुआई कतार में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व में पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। ऐसा करने से प्रति हेक्टेयर लगभग 65 से 70 हजार पौधे रखे जा सकते हैं। इस प्रकार एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। इसके बाद एक जो आवश्यक क्रिया है वो है पौधों पर मिट्टी चढ़ाना। जब पौधे घुटने तक ऊंचे हो जाएं, तो यूरिया की एक तिहाई मात्रा डालकर पौधों में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाने के लिए के अनेक लाभ हैं। यह नत्रजन का रिसाव कम करता है, खरपतवारों को नियंत्रित करता है, पौधों को हवा के झोंकों से गिरने से रोकता है व खेत में जल की निकासी में भी सहायक होता है। अगर पोषण तत्व प्रबंधन की बात करें तो मक्का के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के साथ 7 किलोग्राम फॉस्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश उपयुक्त रहता है। इसमें नाइट्रोजन को 3 समान चरणों में विभाजित कर आधारीय मात्रा में दिया जाता है। उसके बाद एक तिहाई भाग को जब पौधे घुटने की ऊंचाई तक हो जाते हैं तब दिया जाता है, तथा जो इसका तीसरा भाग है वो जब टेस्लिंग की अवस्था में दिया जाता है। टेस्लिंग यानी जब पौधों में नर मंजरी निकलना शुरू होती है तो उस वक्त देना चाहिए। और जो फॉस्फोरस और पोटाश की जो पूरी मात्रा है वो आधारीय मात्रा के रूप में ही दिया जाना चाहिए, यानी जब हम खेत तैयार करते हैं बुआई के लिए तो उसी वक्त ये दे देनी चाहिए। मक्का में कई प्रकार के रोग भी लगते हैं और इसमें जो प्रमुख रोग जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों में वो हैं टर्सिकम पर्ण झुलसा, वो दूसरा जो है वो है धारीदार पर्ण व पर्ण भित्ति झुलसा। जो पहला रोग है टर्सिकम पर्ण झुलसा, उसमें पत्तियों में रोग के जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो शुरुआत होता है छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, और जब परिस्थिति अनुकूल हों तो ये धब्बे अनियमित आकार के हो जाते हैं और फिर अंडाकार या नाव का आकार ले लेते हैं और उनका आकार बढ़ता रहता है, और बड़े होने पर वो सारे धब्बे मिलकर पत्तियों के अधिकांश भाग को ढक देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कवकनाशी मैंकोजेब, जिसे डाइथेन M45 के नाम से भी जाना जाता है, इसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि ये छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण होता है। दूसरा जो रोग है वो है धारीदार पर्ण व भित्ति झुलसा, जिसे अंग्रेजी में बैंडेड लीफ एंड शीट ब्लाइट कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इस रोग के जो विशिष्ट लक्षण हैं वो हैं संकेंद्रित धब्बों का बनना, और ये जो धब्बे हैं ये पत्तियों में आते हैं, पौधे की जो पर्ण भित्ति है उसमें भी आते हैं, और फिर ये धीरे धीरे भुट्टे के जो छिलके हैं उनमें भी दिखना शुरू होते हैं। और रोग अगर उग्र अवस्था में आता है तो उससे भुट्टे भी प्रभावित होते हैं तथा भुट्टे सड़ जाते हैं, और तने व भुट्टों में भूरा कवक तंतु इनका दिखाई देता है, उसमें छोटे छोटे गोल दाने जिन्हें कि स्क्लेरिशिया कहा जाता है वो भी बनते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए जैसे ही रोग के लक्षण प्रकट हों तो उसमें कवकनाशी एजोक्सोस्ट्रोबिन, उसका 0.1% या नेटिवो 0.05% का छिड़काव करना फायदेमंद होता है। इसी प्रकार मक्का में एक प्रमुख कीट लगता है जिसे फॉल आर्मी वर्म के नाम से जाना जाता है, और इसके लक्षण इस प्रकार हैं। मक्का की पत्तियों पर सभी प्रकार के लंबे कागजी झरोखों का पाया जाना आर्मी वर्म का प्रारंभिक लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण प्रथम और द्वितीय अवस्था की सूंडी द्वारा पत्तियों की सतह को खुरच कर खाए जाने से उत्पन्न होते हैं। बड़ी सूंडियां पत्तियों को गंभीर रूप से खा जाती हैं। इनके खाने से पत्तियों पर विषम खांचेदार एवं गोल छिद्र एक पंक्ति के रूप में

0: दिखाई देते हैं। सुंडी पर्ण चक्र पर बड़ी मात्रा में हरे भूरे रंग का मल त्याग करती है और जिससे ये पहचाना जा सकता है कि इस मक्का की फसल में ये कीट लगा हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु शुरुआत की अवस्था में सूखी रेत अथवा मिट्टी का घोल बनाकर पौधों का जो पर्ण चक्र है उसमें डाला जाता है। ऐसा करने से जो सुंडियाँ होती हैं वो पौधों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और पौधे फॉला मीवर्म के प्रकोप से सुरक्षित रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रकोप होने पर इमामेक्टिन बेंजोएट ये 0.4 ग्राम या स्पाइनोसेट नाम की जो दवाई है ये 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। तो किसान भाई बहन, यदि मक्का उगाते वक्त आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही अधिक पैदावार वो अधिक अर्जित आय कर पाने में आप सफल होंगे।
1: पर्वतीय क्षेत्रों हेतु मक्का की उन्नत प्रजातियां और वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार खुलबे से खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राजकुमार मजूमदार का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे गिरीश सिंह बरकली। शाम 5:15 पर युवा साथी युवावाणी कार्यक्रम सुनेंगे जिसमें आज की बात का विषय रहेगा प्रवासी पक्षी दिवस, खेल जगत और आज का इतिहास भी श्रोता सुनेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर और इसी कार्यक्रम में हर पक्षी मायने रखता है इस विषय पर उमा भट्ट से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। शाम 6:41 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत जिसमें अनूप जलोटा और चित्रा सिंह के गाए कुछ भजन हम आपको सुनवाएंगे। शाम 7:00 किसान वाणी कार्यक्रम होगा जिसमें आज की बातें होंगी फसलों में वैज्ञानिक तरीके से उर्वरकों का प्रयोग विषय पर चर्चा सुनिएगा खरीफ की प्रमुख सब्जियों का उत्पादन और इसी कार्यक्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में, रात 8:00 सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस सुनवाया जाएगा। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

FM 107.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज जो फनकार हैं मशहूर अभिनेत्री अरुणा ईरानी। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी सिनेमा की जानी मानी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं अरुणा ईरानी, जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से अपनी खास पहचान बनाई है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मात्र 9 साल की आयु में वो फिल्म गंगा जमुना में नजर आईं। इस फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद अरुणा ईरानी जहां आरा, फर्ज, उपकार, आया सावन, झूम के जैसी सुपरहिट फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएँ करती नजर आईं। साल 1971 में जब 19 साल की थी तब फिल्म कारवां आई। इस फिल्म में जितेंद्र और आशा पारेख मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि अरुणा ईरानी सपोर्टिंग रोल में थी। इस फिल्म के गाने दिलबर, दिल से प्यारे, चढ़ती जवानी या फिर दैया रे दैया, पिया तू अब तू आजा जैसे कई गाने बेहद मशहूर हुए। और इसी फिल्म में अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया ये गाना भी बेहद चर्चित रहा।

3 मई 1952 को मुंबई में जन्म हुआ अरुणा ईरानी का। उनके पिता फरदून ईरानी एक ड्रामा कंपनी चलाते थे और उनकी माँ एक्ट्रेस थीं। अरुणा ईरानी जब वो अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं और पढ़ने में वो बेहद अव्वल थीं। डॉक्टर बनना चाहती थीं लेकिन घर के हालातों की वजह से उन्हें छोटी ही उम्र में फिल्मों में आना पड़ा और वो अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाई। साल 1972 की बात करें तो अरुणा ईरानी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं बॉम्बे टू गोवा फिल्म में, जो कि एक बेहद कामयाब फिल्मों में से एक रही।

0: क्या कर रहा हो?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।

पुरुषोत्तम अरुणा ईरानी ने लगभग 400 से ज़्यादा फिल्मों और कई टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया और वो हिंदी के अलावा कई मराठी फिल्मों में भी अपने हुनर का जौहर दिखा चुकी हैं। और अभिनेता महमूद के साथ वो कई फिल्मों में नज़र आई थी, जिनमें औलाद, हमजोली, नया ज़माना, गरम मसाला, दो फूल जैसे कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया और एक संजीदगी भरी और सशक्त अभिनय से उन्होंने हमेशा लोगों के दिल में अपनी खास जगह बनाई है।

एक ही फनकार अभी आप सुन रहे थे और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज फनकार थीं मशहूर अभिनेत्री अरुणा ईरानी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अंजुपांक्ति का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया में कुछ ऐसी मनमोहक आकर्षक आवाज़ें हैं जो समय के साथ कभी भी धूमिल नहीं पड़ी, कभी पुरानी नहीं हुई, बल्कि और वक्त के साथ गहरी होती चली गईं और अपना जादू और ज़्यादा बिखेरती रहीं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सुरीली बेहद ख़ास मशहूर आवाज़ थी जाने माने पार्श्व गायक तलत महमूद की। उनकी गायकी में दर्द था, संजीदगी थी, मिठास थी, मधुरता थी, सुरीलापन था और शायरी की खूबसूरती थी। उनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों तक पहुंचती है और उनके गाए नगमे, गजल, गीत सभी चाहने वालों की आज कमी नहीं है। आज भी उन्हें लोग उतना ही प्यार करते हैं उनकी आवाज को जितना उस दौर में उनके गीत नगमे या गजलें सुनी जाती थी। आज तलत महमूद साहब को हम ख़ास तौर पर याद कर रहे हैं क्योंकि आज 9 मई उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें नमन करते हैं और आज उनके सुरीले नगमे सदाबहार फिल्मी गीत में हम लेकर आए हैं।

श्रोताओं, तलत महमूद साहब का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी 1924 को हुआ। उनके पिता का नाम मंजूर महमूद था और 3 बहन 2 भाइयों में तलत महमूद छठी संतान थे। घर में संगीत और कला का बड़ा ही खूबसूरत माहौल इन्हें मिला। इनकी बुआ को तलत जी की आवाज़ की लर्जिश पसंद थी और अपने भतीजे तलत महमूद बुआ से प्रोत्साहन पाकर गायन के प्रति आकर्षित होने लगे। इसी रुझान के चलते मॉरिस संगीत विद्यालय, जिसे आज हम भातखंडे संगीत विद्यालय के नाम से जानते हैं, वहां उन्होंने दाखिला लिया। उनकी गायकी की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में तलत महमूद जी ने लखनऊ आकाशवाणी से गाना शुरू किया था और उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी और पहली बार आकाशवाणी के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड जब उन्होंने करवाया तो उस दौर में वो वहाँ दाग, मीर, गालिब और फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायरों की गज़लें गाया करते थे और उनके गायन को बेहद प्रसिद्धि मिली और बाद में सुप्रसिद्ध संगीत कंपनी HMV की एक टीम लखनऊ आई और जब उन्होंने उनके पहले गीत को सुना तो उन्होंने और भी गाने तलत जी से गवाए। इस सफलता से तलत महमूद की किस्मत चमक गया और वो दौर था जब सुरीले गायन और आकर्षक व्यक्तित्व वाले युवा तलत महमूद हीरो बनने का खुद भी ख्वाब संजोया करते थे। और फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं पहले एक गाना उनकी आवाज़ में।

साल 1944 में उनका गाना तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद वो कलकत्ता चले गए, वहाँ उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया और गाने भी गाए। उस दौर में वो तपन कुमार के नाम से जाने जाते थे। 1949 में वो मुंबई आ गए और यहीं से उनका असली सुनहरा दौर आरंभ हुआ। 1950 और 60 के दशक में वो हिंदी फिल्मों के सबसे पसंदीदा गायकों में गिने जाते थे। उनके गाने इतने मशहूर हुए कि वो आज भी उतने ही लोकप्रिय और कर्णप्रिय हैं, जैसे ये गाना लता मंगेशकर के साथ छाया फिल्म में।

बातचीत किया करते थे, बोलते थे। उनको सुनने के लिए कहते हैं कि उनके नज़दीक आना पड़ता था, क्योंकि उनका स्वभाव अपने गानों में, उनके गानों में हमें दिखाई पड़ता था। वो बेहद आदमी थे और बेहद संजीदगी भरे और बहुत ही व्यवहार कुशल। अगर आप तलत साहब को श्रोता सुनने का शौक़ रखते हैं तो आप जानते ही हैं कि उनके गानों की जो बहुत ख़ास बात थी वो थी उनकी काव्यात्मकता। उन्हें उर्दू शायरी की बेहतरीन समझ थी, इसीलिए वो चाहे गीत गाएं, गज़लें या फिर नगमे, जो भी वो चुनते थे वो श्रोताओं के दिल के बेहद करीब बन जाते थे। और भले ही वो एक सीमित दायरे में गाते थे तो भी संगीत प्रेमियों के दिल में वो हमेशा बसे रहते हैं।

श्रोताओं, तलत महमूद साहब और मन्ना डे जी की आपस में बहुत करीबी दोस्ती थी। मन्ना डे ने अपनी आत्मकथा मेमोरीज कम अलाइव में लिखा है कि एक बार मदन मोहन ने बम्बई आई मलिकाए गज़ल बेगम अख्तर के सम्मान में रात्रि भोज दिया, जिसमें बम्बई की हर बड़ी संगीत हस्ती को बुलाया गया। जैसा कि उम्मीद थी, भोज से पहले संगीत की एक महफिल जमी और सबसे पहले तलत महमूद साहब को माइक के सामने आने के लिए कहा गया। जैसे ही उनकी पहली गज़ल समाप्त हुई, इतनी तालियां बजी कि मेरे और मोहम्मद रफ़ी के बीचों बीच बैठे हुए किशोर कुमार ने हम दोनों से फुसफुसा कर कहा, चलिए अब हम दोनों चुपके से भाग चलें। तलत के फैलाए जादू के बाद अब हम लोगों को और कौन सुनेगा भला। तो ऐसी गायकी थी उनकी, जगजीत सिंह और मेहदी हसन दोनों ही ये गज़लों के महान शख्सियत हैं। इन्होंने स्वीकारा है कि उनके गायन पर तलत महमूद का बड़ा असर रहा। मेहदी हसन तो बताते हैं कि उन्हें जब पहली प्रसिद्धि मिली, तब उन्होंने कराची की एक महफिल में तलत साहब की ही एक गज़ल हुस्न वालों को न ये दिल दो ये मिटा देते हैं गाया था, और इस गायन के लिए मेहदी हसन साहब को उस दौर में 17,000 रुपये मिले थे, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। ऐसे महान शख्सियत के धनी थे तलत महमूद।

तलत साहब की प्रसिद्धि की बात करें तो शुरुआती दौर में उन्हें मुंबई में, तब की बम्बई में, कोई ख़ास सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में और उनकी फिल्में जो प्रदर्शित हुई, राखी, अनमोल रतन और आरजू, इन फिल्मों के ज़रिए उनके करियर को एक विशेष चमक मिली। फिल्म आरजू की गज़ल, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, ने अपार लोकप्रियता हासिल की। और यहीं से तलत महमूद और दिलीप कुमार का अनूठा संयोग बना, जो कई फिल्मों में दोहराया गया। तलत महमूद ने हिंदी की तरह बांग्ला फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय भी किया, गाया भी, और 17 भारतीय भाषाओं में भी उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ दी है। मशहूर संगीतकार नौशाद ने भी तलत महमूद को फिल्म बाबुल के लिए गाने का मौका दिया।

तो शुद्ध अभिनेता दिलीप कुमार के लिए उन्होंने कई फिल्मों में गीत गाए, और फिल्म बाबुल का उनका जो गाना था, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, ये गाना दर्शकों द्वारा बेहद सराहा गया।

चर्चित फिल्मों में लगातार सुपरहिट गाने गाए और खूब शोहरत कमाई। 60 के दशक के कई गाने हैं, उन्होंने 50 और 60 के दशक में जो गाने गाए हैं उनमें सुजाता का गाना याद कीजिए, जलते हैं, जिसके लिए ये गाना भी बेहद पसंद किया गया।

पार्श्व गायकी से अलग तलत महमूद साहब ने कुछ फिल्मों में मुख्य अभिनेता के तौर पर काम किया। उनके साथ काम करने वाली अभिनेत्रियों में सुरैया माला सिन्हा नूतन का नाम लिया जाता है और बाद में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग पर ही ध्यान दिया और तलत महमूद ने अभिनय छोड़ दिया। उनकी गायकी के ख़ास अंदाज को आप कुछ यूँ भी समझ सकते हैं कि एक बार तलत महमूद ने अपनी आवाज़ की जो कंपन है उसको बदल कर गाने का प्रयास किया तो महान संगीतकार अनिल विश्वास उनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन्होंने जब वो नई किस्म की आवाज़ को सुना तो तलत महमूद से कहा, मेरा तलत मुझे लौटा दो। कहा जाता है उस रोज़ से तलत महमूद साहब की आँख में आंसू आ गए और उन्होंने उसके बाद हमेशा अपने स्वाभाविक अंदाज में गाया और वही कंपन वो लर्जिश उनकी आवाज़ की खासियत बन गई। और उन्होंने अपने दौर के जाने माने सभी संगीतकारों के साथ काम किया, चाहे सलिल चौधरी हो, अनिल विश्वास हो, मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र, एस डी बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ उन्होंने अपना सुरीला उनके संगीत के साथ अपने सुर दिए। दिलीप कुमार, सुनील दत्त जैसे अभिनेताओं पर उनकी आवाज़ बेमिसाल रही और उन्होंने सोने की चिड़िया फिल्म में काम किया था और गैर फिल्मी गज़लों और गीतों के उनके कई एल्बम भी जारी हुए और उन्होंने दुनिया भर में कई संगीत के कार्यक्रमों में भी शिरकत की और अपने पूरे करियर में उन्होंने लगभग 800 गीत गाए। 9 मई 1998 को वो इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज़ और उनकी गाई गज़लें हों चाहे नगमे हों गीत हों वो हमेशा इन फिज़ाओं में गूंजती रहेंगी और तलत महमूद हमें हमेशा याद आते रहेंगे। उन्हें श्रद्धा नमन। आज बस इतना ही सदाबहार फिल्मी गीतों में। इजाज़त दीजिए अंजू बांगती को भी। नमस्कार।

सदाबहार फिल्म गीत अभी आप सुन रहे थे FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव M.A. बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका

0: में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:05 में है प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल स्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं गिरीश सिंह मोरा का गाया लोकगीत। श्रोता, हमारी इस सभा के सभी कार्यक्रम इस समय आप मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र और 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर FM केंद्र बागेश्वर से भी सुन रहे हैं।

समझ न आया मेरा तेरिया शू काम। कह कह दीदी चारे पदार धू कह की निर फाम।

गिरी सिंह बोरा के गाय सी छपेली के साथ शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक नज़र हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहले आज के शेष कार्यक्रम, आज रात्रि 10 बजे सुनेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम और रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स कैन। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर आप सुनते हैं गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर सुनेगा कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही समय पश्चात संध्या 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा प्रवासी पक्षी दिवस। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनेगा हर पक्षी मायने रखता है विषय पर उमा भट्ट से भेंटवार्ता। भक्ति संगीत में संध्या 6:41 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे अनूप जलोटा और चित्रा सिंह की गाई भक्ति रचनाएं। किसान भाई किसान वाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में सुनेगा पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाएँ विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम में और रात्रि 9:15 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8 बजे। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

हमारी कल प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। प्रातः 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार। 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम होगा। 6:10 पर आराधना कार्यक्रम में आप सुनेंगे शर्मा बंधु, किशोरी अमोलकर, उषा मंगेशकर, उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे की गायी भक्त रचनाएं। आज की बात कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 6:40 पर। 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। श्री रामचरित मानस गान पाठ का समय रहता प्रातः 7:10। प्रातः 7:30 पर कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमंजरी में कल आप सुनेंगे संतराम और आनंदी देवी के गाए कुछ लोकगीत। 7:40 पर सुनेगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। बाल वाटिका, नन्हे मुन्ने बच्चे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका सुनेंगे कल प्रातः 8:30 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर हम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 9:05 पर। कल सुबह 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरंग और 10:35 पर होगा कार्यक्रम सुरबहार। फौजी भाई फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनेंगे 11 बजे। 11:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत मेरी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे। 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम घर संसार। कल इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा घटता जल स्तर बढ़ती चिंता। सुगम संगीत सुनेगा दिन में 1:15 पर। 1:30 पर आप सुनेंगे रूपक टैगोर विश्व कवि विश्व मानव। प्रस्तुत करता होंगे डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। दिन में 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे स्वीट कॉर्न तथा बेबी कॉर्न मक्का की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी देंगे डॉक्टर G.S. बिस्ट। फिल्म संगीत सुनेगा 2:45 पर एक ही फनकार कार्यक्रम में और अपराह 3 बजे सदाबहार फिल्म गीत कार्यक्रम के तहत। हमारी कल सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में कल हम आपको सुनाएंगे सरिता पंत का गाया लोकगीत। कल रात्रि 10 बजे सुनेगा रविवासरीय संगीत सभा। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे

संध्या 5:15 पर, 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बुरांश। भक्ति संगीत सुनेगा संध्या 6:41 पर। संध्या 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रादेशिक लोकगीत और 7:15 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8 बजे। कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये थे हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मीनाक्षी। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं प्रवासी पक्षी दिवस, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आसमान में उड़ते पक्षियों की कतारें न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि ये प्रकृति के उस अनुशासन को भी दर्शाती है जो हजारों मील की दूरी तय करने के बाद भी नहीं दिखता। हर साल लाखों पक्षी बर्फीले प्रदेशों, ऊंचे पहाड़ों और विशाल समुद्रों को पार कर भारत की धरती पर दस्तक देते हैं। इन मेहमानों के स्वागत और संरक्षण के लिए हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। भारत जैसे देश में जहां अतिथि देवो भव की परंपरा है, ये प्रवासी पक्षी हमारे सबसे दूरस्थ अतिथि है। साइबेरिया, मंगोलिया और मध्य एशिया से आने वाले ये पक्षी केवल मेहमान नहीं, बल्कि पर्यावरण के इंजीनियर भी है। ये कीटों का नियंत्रण करते हैं, बीजों के प्रसार में मदद करते हैं और जल निकायों के स्वास्थ्य का सूचक होते हैं। आज आधुनिकी की दौड़ में इन पक्षियों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण के कारण इनके रुकने के स्थान सूख रहे हैं। हाल के वर्षों में प्रकाश प्रदूषण एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है। तो दोस्तों, हमारा दायित्व है कि प्रवास के समय गैर जरूरी रोशनी को बंद रखें, स्थानीय जलाशयों और झीलों को कचरा मुक्त रखें, अपने आंगन या छत पर पक्षियों के लिए साफ पानी और दाना उपलब्ध कराएं। पक्षी सीमाओं को नहीं मानते, वे पृथ्वी को एक घर समझते हैं। यदि हम इन छोटे परिंदों की उड़ान को सुरक्षित रख पाते हैं, तो असल में हम अपने पर्यावरण और भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं। इस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि इन मेहमानों के लिए हम अपने आसमान और अपनी धरती को सुरक्षित बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सुनाते हैं आपको यह खूबसूरत सा गीत।

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में बढ़ते हैं हमारी आज की अंक खेल जगत की ओर, और जिसके अंतर्गत हम जानेंगे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण खेल समाचारों के बारे में। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में 5-1 से हराकर टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक पक्का कर लिया। कोरिया की नई टीम के सामने भारत की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत की टीम ने पहले सेट में 58-55, दूसरे में 56-56 और तीसरे में 58-56 से जीत हासिल की। रविवार को भारत स्वर्ण पदक के लिए चीन से भिड़ेगी।

मैनचेस्टर सिटी ने महिला सुपर लीग फुटबॉल का खिताब 10 साल बाद जीत लिया। आर्सेनल के ब्राइटन के साथ 1-1 ड्रॉ करने के बाद एक दौर शेष रहने सिटी का पहला स्थान पक्का हो गया। ये सिटी का दूसरा खिताब है। टीम इससे पहले 2016 में चैंपियन बनी थी। आईपीएल 2026 ने पाकिस्तान क्रिकेट को करारा झटका दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि कई खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ उसके घर में 30 मई से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत आपको सुनाते हैं खेलों से निखरता।

0: गई ये भेंटवार्ता।
1: नमस्कार दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा पढ़ाई, मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपने स्वास्थ्य के लिए समय कम बचता है। ऐसे समय में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी विकसित करते हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है युवा खिलाड़ी मुकेश। आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: मुकेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज के युवाओं के जीवन में खेलों का कितना महत्व है।
2: जी, आज के समय में खेल युवाओं के जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। पहले लोग खेलों को केवल मनोरंजन समझते थे, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि खेल स्वास्थ्य और भविष्य दोनों के लिए जरूरी है। खेल खेलने से शरीर फिट रहता है, तनाव कम होता है और मन खुश रहता है।
1: बिल्कुल, एकदम सही बात आपने ये कही। और जो आज के युवा मोबाइल और इंटरनेट में ज्यादा समय बिताते हैं, ऐसे में खेल उनकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं?
2: ये सच है कि आज अधिकतर युवा मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अगर युवा खेलों से जुड़े तो वे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बन सकते हैं।
1: जी।
2: खेल उन्हें बाहर निकलने, लोगों से मिलने और टीम के साथ काम करना सिखाते हैं।
1: जी बिल्कुल, गेम्स का एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण रोल होता है कि हम टीम के साथ काम करना सीखते हैं। और साथ ही क्या खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने तक सीमित है या इससे कुछ और भी सीखने को मिलता है?
2: खेल केवल फिटनेस तक सीमित नहीं है। खेल हमें अनुशासन, समय का महत्व, धैर्य और हार जीत को स्वीकार करना सिखाते हैं। जब कोई खिलाड़ी हारता है तब वह दोबारा मेहनत करना सीखता है। यही बातें जीवन में भी काम आती है।
1: जी बिल्कुल, एकदम सही बात आपने कही कि खेल में एक का हारना और एक का जीतना तय है, और यही हमें सिखाता है कि हम बार बार कैसे मेहनत कर आगे बढ़ सकते हैं। क्या ऐसा भी अक्सर होता है कि कई माता पिता मानते हैं कि खेलों से पढ़ाई प्रभावित होती है, इस बारे में आपका क्या कहना है?
2: मुझे लगता है कि पढ़ाई और खेल दोनों साथ साथ चल सकते हैं। खेल खेलने से दिमाग तरोताजा रहता है और पढ़ाई में भी ध्यान लगता है। जो विद्यार्थी खेलों में भाग लेते हैं उनमें आत्मविश्वास और एकाग्रता अधिक होती है।
1: बिल्कुल, एकदम सही बात कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते अगर हम गेम्स भी खेल रहे हैं तो ऐसे में हमारा माइंड फ्रेश रहता है और आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही आज के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा किन खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, आपको क्या लगता है?
2: आज क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है।
1: जी,
2: लेकिन इसके अलावा फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और एथलेटिक्स में भी युवाओं की रुचि बढ़ रही है। अब छोटे शहरों और गांवों के युवा भी खेलों में आगे आ रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, कई अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है जिससे युवाओं का जो रुझान है वो खेल की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। क्या खेलों में करियर बनाना आज के समय में अच्छा विकल्प माना जा सकता है?
2: बिल्कुल, पहले खेलों को केवल शौक माना जाता था, लेकिन अब खेलों में अच्छे करियर के अवसर हैं। खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं। इसके अलावा कोच, फिटनेस ट्रेनर और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
1: जी बिल्कुल, खेल युवाओं के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है?
2: खेल खेलने वाले युवाओं में आत्मविश्वास अधिक होता है। वे टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। खेल व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं।
1: जी, अंत में आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। खेल हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने गेम्स के प्रति यहाँ पर हमें बताई। तो दोस्तों, इस बातचीत से ये स्पष्ट होता है कि आज के युवाओं के जीवन में खेलों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी
0: दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत अभी आपने सुनी खेलों से निखरता युवा व्यक्तित्व विषय पर युवा खिलाड़ी मुकेश से की गई ये भेंटवार्ता। लीजिए एक बार फिर से पेश है आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इतिहास में घटी हर घटना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये न केवल इतिहास की जानकारी देती हैं बल्कि हमारी भविष्य की राह भी दिखाती हैं। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास। रूस हर साल 9 मई को विजय दिवस मनाता है। ये दिन जर्मनी पर रूस की विजय का प्रतीक है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस ने इसी दिन जर्मनी को पराजित किया था, जिसके बाद से हर साल रूस इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है। 9 मई के दिन रूसी सेना अपने नए नए हथियारों को दिखाकर शक्ति प्रदर्शन करता है। रूस में ये दिन उतना ही खास होता है जैसे कि भारत में 26 जनवरी को गण

गणतंत्र दिवस का दिन होता है। साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया मोहब्बत का अजीम शाहकार ताजमहल 9 मई के दिन ही बनकर पूरा हुआ था। ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे थे। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ था जो 1653 में जाकर पूरा हुआ। ताजमहल भारत का एक प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये मुगलों के अनेकों वास्तुकलाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच विंडसर समझौता हुआ आज ही के दिन। अंग्रेज शासक विलियम तृतीय ने फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा की। बम्बई में 1874 में घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम कार आज ही के दिन शुरू हुई थी। 9 मई वर्ष 1540 में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ वर्ग में हुआ था। वे मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। प्रताप सिंह राजा उदय सिंह और जयवंताबाई के पुत्र थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम के लिए अमर है। 18 जून 1576 में उनके नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलोल खान को उसके घोड़े सहित दो टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मेवाड़ रियासत न छोड़ने वाले महान पराक्रमी प्रताप ऐसे शासक थे जिनका शीश कभी भी किसी के सामने नहीं झुका। भारतवर्ष में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी है। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रतापी घोड़े का नाम चेतक था। हल्दीघाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय सैनिक शक्ति, भक्ति और बुद्धिमता और वीरता का परिचय दिया। 9 मई 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी आज ही के दिन कोलकाता में हुआ था। उन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव बहुआयामी प्रतिभा वाले शख्सियत थे। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक थे। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। वर्ष 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद उन्होंने इस पदवी को वापस लौटा दिया। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। तो दोस्तों, अभी हमने जानी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आज ही के दिन घटी थी। तो चलिए एक बार फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर और करवाते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं अंतिम चरण की ओर और जान लेते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। हमारा कल का प्रश्न था, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है SM जावेद कुमला झारखंड से, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण जौहरी जगदीश जौहरी ने, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरुशे, सुषमा शुरू से मायरा सुरुशे, ग्रामपुत की कला कवर्था छत्तीसगढ़ से विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे ने, मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी ऊपरकोट बुलंदशहर से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा पालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, डॉक्टर दिनेश काले जी। दोस्तों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर और भेजना चाहते हैं हमें, तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9411100112। कल फिर होगी मुलाकात एक नए रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी रेडियो मित्र मीनाक्षी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

नमस्कार। कार्यक्रम उत्तरायण सुनने सभी श्रोताओं का, श्रोताओं जस हमर पहाड़ में उन्हें एक बहुत ठूल समस्या है कि हमारे यहाँ के लोग रोटी रोजगार चक्कर में अपू गांव छोड़नी, अपू नगर छोड़नी, अपू इलाका छोड़नी और दू जब दू डबल कमुनी और वीक बाद घरूनी और कई लोग यह सुनी कि जो प्रदेश में ही बस जानी उनको हम लोग उन प्रवासी लोग जो लोग अपू इलाका अपू घर को छोड़नी उनको प्रवासी कही जा और प्रवास अपू घर को छोड़ने की जो प्रक्रिया है या कोई सिर्फ मनुष्य निकरण या मैं कई पक्षी लक्षण जो लोग मौसम प्रति हूण पर अपू इलाक को छोड़ भेर दुहर इलाक में होनी हमारे आस पास ले कई साइबेराई पक्षियाँ उन्हें अपन देखो ना ह्यून में हमारे यहाँ कई प्रकार का नई चौर दिखेनी जो रूस बटी उन्हीं कदू दूर रूस भय वहाँ बटी लोग यहाँ उड़ भेर उन्हीं और हमारे देश के तमाम इलाक्षण जहाँ पक्षी अपू देश छोड़ भेर हमारे देश में उन्हीं और यकू कई जहाँ प्रवासी पक्षी और आज पूर दुनियावल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने लग रही। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में द्विभार मनाई जा पहली मई दोहर झंझर हूँ और दोहर बार यही दिवस को अक्टूबर दूसर छंचर हूँ मनाई जा यह दिन पूर्व दुनिया वाल को बताई जा कि जो प्रवासी पक्षी छन उ लोग अपू इलाक अपू देश को छोड़ भेर दुहर जग जानी जब मौसम उन्हें ज़्यादा अनुकूल हूँ तो हम लोगों को यस जो पक्षी हमारे आस पास दिखनी उनको हमूर उन्हें संरक्षण करण में अपू योगदान देना चाहें। अगर हम उन्हें संरक्षण करूँ तो वो अगले साल फिर आल और वो हमार अतिथि है तो तब आज पूर दुनिया में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाई जाना यह उद्देश्य चूँकि हम लोगों को अपन दुनिया आसपास में कई चीज़ घटित होने कस कस हमारे दुनिया में चल रहा यह एक बार में जानकारी दी जाने और यह कार्यक्रम में 118 देश लगभग शामिल है रही जो यह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने लग रही। हम लोगों का हमेशा अपू आसपास में जो जो चीज़ घटने लग रही कदू बदलाव हमारे आसपास होने लग रहा वीक बार में हमको जानकारी होनी चाहें और जब हम वीक बार में जानकारी लूँ तब हम अपनी दुनिया को बेहतर समझूल। जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस छू यको मुख्य रूप पर कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको मध्य और दक्षिण अमेरिका कैरेबियाई देशों में मनाई जाए और अगर हम बात करूं कि यह जो दिवस छू यह हमारे जीवन में कदों महत्व छू यह जीवन में यह महत्व छू कि जिस इलाके में हम रहूँ उत्तराखंड में देख लूँ वो गाँव में हम देख लूँ कई बार जाड़न में या कई मौसम में आप लोग देखा अलग अलग रंगा कर पक्षी हमारे यहाँ दिखेंगे जो बारह मास नहीं दिखी कई हमारे यहाँ सिटाव है गए घिनौड़ है गए काव है गए तो लोग हमको हमेशा दिखेनी। कुछ पक्षी ये सुनी जो मौसम विशेष में हम लोग उनको दिखेनी वो होनी प्रवासी पक्षी सोचो कदू दूर बटी वो उड़ भेर हमारे इलाके में होनी और कुछ टाइम या बिता भेर फिर वो अब वो घर हों बट लग जानी और रति है गए ब्याह के है गए उनर चहचहाट हमार आस पास वातावरण को बहुत भल बढ़ोनी तो हम लोगों को यश पक्षी का स्वागत करना चाहें और उनर रक्षा की जिम्मेदारी हम लोग नक छू। अगर हम देखना हमारे आस पास कोई नानतीन कोई सयान आदिम वो पक्षी को परेशान करने लग रहा वो चौड़ना लीजिए दिक्कत करना तो हमको को मना करना चाहें और बतौना चाहें कि जो पक्षी हमारा कभी कभी दिखूनी यो हमार अतिथि छुन हमको यनर सत्कार करना चाहें। बात आखिर के लिए करना रूल वो हबेर पहली यो ब्याह बखत छू ब्याह बखत में आपको सुनना समूह स्वर में यो सुंदर गीत।

0: श्रोताओ अल्ले समूह शर्मी आपूल यो सुंदर गीत सुना और अब यो जरूरी संदेश।
1: Every arrival this May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value, with its bold design and spacious comfort. It's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
2: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry! Offers for a limited time only. TNC apply.
3: Next.
0: तो श्रोताओ जस हमूल को कि आज पूरी दुनिया में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाई जानो। यो एक यह दिवस जो कुछ साल में दुबार मनाई जा जैक अल्लाह मूल पहले जिक्र करो। मैक्सिको मध्य और दक्षिणी अमेरिका कैरिबियाई देशन में यो अक्टूबर दोहर छंछरों मनाई जा और जो आज हम मई छू तो मई में यह दिवस कनाडा अमेरिका में मई दोहर छंछरों मनाई जा और यह बारक जो थीम छू विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक ऊँचू हर पक्षी मायने रखता है। हर पक्षी मायने रखता है यह थीम छू यह साल एक विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक और यही विषय पर हम अखिल के आपको वार्ता सुन लग रहा है जानकारी आप लोग दगे साझा करने लग रहा है कि हर पक्षी मायने रखता है और यह जानकारी आप तक पुजोन लग रही उमा भट्ट।
4: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाए जा यह अक्टूबर और शनिवार दोहर दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस रूप में यह हम मनुनु 2026 में यह दिन 9 मई के मनाई जानो। प्रवास के हूँ अपन बच्चन के पालन में और प्रजनन करण में या मौसम मारल खुद का बचुना लीजिए जब एक पक्षी सबसे भल पारिस्थितिक परिस्थितियों और आवासक खोज में सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूरी तय करो तो एक प्रवास कही जा। उदाहरण लीजिए जब सर्दी अधिक बढ़ जा और कोई पक्षी ठंडे क्षेत्र बटी गर्म क्षेत्र और उनी और फिर के टाइम बाद फिर मौसम बदलते ही वापस लौट जानी। आज बहुत सारे पक्षी यह यात्रा दौरान थक जानी प्यास लग जा या भोजन कमी कारण उन्हें मृत्यु हो जा। यस में हम मनुष्यों मदद तक उनका बहुत ज़्यादा जरूरत छ। यह लीजिए प्रवासी पक्षी और उन आवासक संरक्षण आवश्यकता के समझते हुए साल में दो बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी पक्षी दिवस मनाए जानो। यह एक इतिहास वन्य जीवक जो प्रवासी प्रजाति और अफ्रीकी यूरेशियाई वाटरबर्ड समझौता संरक्षण पर सम्मेलन द्वारा आयोजित विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान छ जो प्रवासी पक्षी और उन आवासक संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालू। यह मनाई जानी शुरुआत 2006 बटी करीगो जब अफ्रीकी यूरेशी प्रवासी जल पक्षी संरक्षण समझौता सचिवालय द्वारा वन्य जीवक जो प्रवासी प्रजातिनक संरक्षण पर कन्वेंशन द्वारा सचिवालय सहयोग द्वारा यह की गई जो वर्ष 2006 में प्रवासी जल पक्षी दिवस का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस रूप में विस्तारित करी गयो और वी बाद वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 8 और 9 अप्रैल 2006 के प्रवासी पक्षीनक बारे में अब हम समर्थनक आवश्यकता छ। भारत में प्रवासी पक्षी भारत प्रवासी पक्षीनक एक महत्वपूर्ण स्थान छ। यहाँ जलवायु और प्राकृतिक संसाधन इनका अपूर आकर्षित करनी भरतपुरक केवलादेश राष्ट्रीय उद्यान चिल्का झील और सुंदरवन जस स्थान यह पक्षीन प्रमुख आवास छ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किले मनाई जा जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाई जाना मुख्य उद्देश्य छ लोगों के भीतर प्रवासी पक्षी उन्हें जो उन्हें प्रति जागरूकता पैदा करण और उनका बचूँ ताकि वो सही सलामत अपने देश लौट सको और फिर मौसम अनुसार वापस ले आ जाओ सब प्रवासी।

0: सी पक्षी हमार साझा प्राकृतिक विरासत के एक हिस्से छन और वो प्रजनन भोजन और विश्रामक लीजिए अपन प्रवास मार्गक नेटवर्क पर निर्भर होनी। प्रवासी पक्षीनक संरक्षणक आवश्यकता के लहूँ प्रवासी पक्षी हमार और पारिस्थितिक तंत्रक बीच में काफ़ी जरूरतमंद छन। पक्षी द्वारा फूलों में परागण प्रक्रिया बीज फैलाव और कीट नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करी जानी साथ में यह पर्यटन और फोटोग्राफी जैस प्रमुख आर्थिक लाभ और लोगों का रोजगार प्रदान करूं। प्रवासी पक्षी ने सामान बहुत सारे खतरे होनी आज प्रवासी पक्षी का बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ो जिसकी जलवायु परिवर्तन प्रदूषण वन कटान और शिकार इन कारण इन्हें आवास नष्ट जानी और इन्हें संख्या में कमी आ जाने। प्रवासी पक्षी नक संरक्षणक उपाय हमन का जो प्रवासी पक्षी ने रक्षा लीजिए के प्रयास करण चाहें जिसकी पेड़ पौधों ने रक्षा करण चाहें जल स्रोत का साफ करण चाहें पक्षी न शिकार को बंद करी जाए चाहें लोगों में एक जागरूकता फैलू चाहें सरकार और समाज द्विनन का मिलकर यह कार्य करण चाहें। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 जो विषय हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक विषय प्रस्तुत की जा जय उद्देश्य प्रवासी पक्षियों का प्रभावित करने वाले मुद्दे बारे में जागरूकता प्रदान की जा और उन्हें संरक्षण लीजिए दुनिया भर में लोगों और उन्हें संगठन का प्रेरित करी जा। यह जो विषय छू हर पक्षी मायने धरूँ और आपक जो अवलोकन छू उ महत्वपूर्ण छू यह विषय प्रवासी पक्षी संरक्षण में सामुदायिक विज्ञानक अहम भूमिका निभू 2026 अभियानक तहत लोगों भागीदारी लय में हूँ बहुत जरूरी छू इन्हें प्रयासन पर इमें प्रकाश डाली जा जो पक्षी संरक्षण और विज्ञान शोधनक लीजिए बहुत जरूरी छू यह बतूँ कि दुनिया भर में व्यक्ति समुदाय और संगठन मिलकर सीमाओं जो भैर प्रवासी पक्षी चन उनका बेहतर तरीक़ल संरक्षित करीजो और उन्हें लीजिए ज्ञान बढ़ा सको। यह जान लिंचू कि भारत में उड़ीवाल प्रमुख प्रवासी कोको छन भारत में उड़ीवाल 5 प्रमुख प्रवासी पक्षी छन जिसकी साइबेरियन सारस आमूर जालकन राजहंस रोजी पेलकिन और एशियाई कोयल प्रमुख जो प्रवासी पक्षी छन उन्हें बहुत सारे उदाहरण छन जिसकी दुनिया में बहुत सारे प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी होनी जैसे साइबेरियन क्रेन फ्लेमिंगो बार हेडेड गूज आदि। भारत में सर्दीनक मौसम में यह पक्षी ऊनी और यहाँ तालाब झील और जंगलन में रूनी। हमिंग बर्ड सबसे नान प्रवासी पक्षी छू यह प्रवास करण बखत 48 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार यात्रा कर सकूँ। यह पक्षी पर्यावरण में फैली प्रदूषण वजह खत्म हो जानी अगर इन्हें बचाव न की जाओ तो जल्द ही पृथ्वी पर यह पक्षी खत्म हो जाए और हमन का इन्हें संरक्षण करण जरूरी छू अतः इन्हें संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण छू। प्रवास जो विशेषता छू वो के छन प्रवासी जो पक्षी ने यात्रा बहुत कठिन हो वो हजारों किलोमीटर तक उड़ान भरनी और बहुत सारे पक्षी बिना रुकी दूरी तय कर लेनी वो अपन दिशा पहचान लीजिए सूरज और तार तथा पृथ्वी जो चुंबकीय क्षेत्र हो उन्हें उपयोग करनी यह इन्हर अद्भुत क्षमता का दर्शू अतः हम यह कह सकनूँ कि हम का इन्हें संरक्षण करना बहुत जरूरी छू। तो हम यह कहूँ कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हम उनका यह सीखूँ कि हम उनका प्रकृति और पक्षी ने रक्षा करना चाहे। प्रवासी पक्षी हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्से छन यदि हम इनका बचूँ तो हमारे पर्यावरण लय सुरक्षित रह सकूँ। यह लीजिए हम उनका संकल्प लें छू कि हम यह सुंदर पक्षी नक रक्षा करूँ यश में हम उनका इनक संरक्षण पर ध्यान दें चाहें और अपन घरक छत और बगीचन में इन्हें खान पीन और आरामक प्रबंध करन चाहें।
1: हर पक्षी मायने रखता है अल्लापुल यो वार्ता सुनी और यमी दी गई जानकारी कई लोग नक लीजिए नहीं हुनल और कई लोग न पास यो जानकारी हुनल तो हम लोग हमेशा कार्यक्रम में कोशिश करनूँ आप लोगों को नई नई जानकारी आप लोगों का साझा करूं दगड़ में जो जानकारी आप लोगों के पास छू उमी मुण वृद्धि करूं। तो आप लोग आज पुरतुनी दगर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस थीम को ध्यान धरिया कि हर पक्षी मायने रखता है उन मतलब छू जदुल चौड़छुन वो हर

हर एक बहुत महत्व छू, हर एक यह प्रकृति लिजी महत्वपूर्ण छू और यह प्रकृति हमर लिजी महत्वपूर्ण छू। तो यह बात हमेशा आप लोगों का ध्यान धरना चाहें। और कार्यक्रम में अगले आपको सुनना है समूह स्वर्मी यह सुंदर कुमाऊनी झोड़।

श्रोताओ, समूह शर्मी अल्लाह फुलियो झड़ सुनो, जो हमारे आँख लोग गीत हुनी उमें हमार पहाड़क पीड़ा ही हमार पहाड़ काम काज हुनी। और यो गीत में ना फुल देखो कि भाबर ये में जिक्र छी, यानि कि रोजी रोटी तलाश में या कोई ब्याह कर भेर दूर देश नह जा, नई दुनिया पुण जी बसूँ ब्याह कर भी जब चल जाए दोहर जाग जाए, वहाँ वो एक पुर नई संसार देखें, नए लोगों दगरें और प्रवास हमारी आँख पहाड़िनक एक जीवनक जरूरी हिस्सा छू। यहाँ लोग प्रवासी छन और हम अगर बात करनू जो हमारे जिला अलमर छू, यह प्रवासी मामल में हमारे प्रदेश में जो मुख्य तीन जिले छन उनमें यह शामिल छू। हमारे यो जिले बटी प्रवासी युवाओं की संख्या ज़्यादा छू, क्योंकि यह लोग रोजी रोटी तलाश में अपू घर छोड़नी अपू घर बार छोड़नी और बिहार जब भेद डबल टक कमुनी वीक बाद घर होनी। और कई लोग यह सुनी जिनको वहाँ का हाव पानी रास है जी और वो लोग परदेसी है जानी, और जब गाँव में काम काज ही पुछपाठ हूँ तब वो लोग अपू घर थी होनी। तो बातचीत है गया, अब अगले का आपको सुनना यो जरूरी संदेश।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: तो श्रोताओं, जस आज हम प्रवासी पक्षियों खमूल बात करी, प्रवास हम लोग ले करनू, और यो जो प्रवास थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण छो, और कई पर्यटक ले होनी जो हमार यहाँ पहाड़ में कुछ दिन रह जी प्रवास कर होनी, यानी कि जो हमार यहाँ आर्थिकी का वो लोग अगिल बढ़ोन में महत्वपूर्ण योगदान देनी। अब यो गर्मी आ गए तो आप लोग मानो कि रूढ़ में हमारे यहाँ मैदान बटी बहुत से पर्यटक होनी, और जो हमार प्रवासी लोग जो लोग बिहार जा रही वो लोग ले या गर्मी में जब नंदीना छुट्टी पड़नी वो लोग ले पहाड़ अपू घर वापस होनी। यहाँ जो ठंड हमार हावपण छू, जो उनर ले हावपण छू, वीक यदु मोहिल यहाँ हावपण छू।

कि वो लोग जैसे गर्मी में जो लोग बिहार जाना नंदिन पढ़ाई करनी, वो लोग वापस अपू नंदिन के लिए भेर पहाड़ अपू घर में होनी। तो जैसे हम बात करी पर्यटक सीजन एक, तो हम देखने लग रहा है कि जो हमारे पहाड़ से लगातार यमी नई नई योजना चलने लग रही वील हमारे यहाँ तमाम पर्यटक लोग होनी। हम लोग ने क्या जिम्मेदारी छू कि जो पर्यटक हमारे यहाँ होनी हम उन्हर भले के आवभगत करूँ। जब हम उन्हर आदर सत्कार करूँ तो वो लोग अखिल साल हमारे वहाँ आल, जब वो हमारे पहाड़ में आल तो हमारे पहाड़ को वो रोजगार दियल। कहीं गढ़वाल को रोजगार मिलल, कहीं होटल वाल को रोजगार मिलल। और जब वो खाणु खानी वो नन्न जो हमारे दुकानदार जो चाहखुन छन जो खाना रेस्टोरेंट छन उनको रोजगार मिलल, तो हम लोग उनको अपू अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहें। और जब यहाँ आल तो यहाँ बटी वो बहुत सी चीज़ ले जानी, कोई लोग यहाँ के साग पात ले जानी, यहाँ के दाव ले जानी। तो व्हील जो हमारे ग्रामीण लोग छन, जो हमारे काश्तकारी जो लोग करने लाग रही, उन लोगों को रोजगार मिलूँ। और कई युवा जो गाइड तौर पर उन्हर जगह काम करने लाग रही, जो यहाँ पहाड़ा इलाका ना बारमी, यहाँ डनकना बारमी, यहाँ मंदिरा बारमी, यहाँ पूरी जानकारी वो पर्यटकन के देनी, तो गाइड रूप मिला यहाँ के लोगों को रोजगार मिलूँ। तो हमारे यहाँ जो पर्यटन छू, यहाँ रोजगार एक बहुत ठुल धुरी छू, वीक आसपास हमारे यहाँ रोजगार घूमू। एला वो चार धाम यात्रा देख लियो, वो धार्मिक यात्रा छन, वहाँ लगातार लोग उन लाग रही और वीर वो इलाक में रोजगारक बहुत से संभावना पैदा होने लाग रही। हम अगर आप अलमर दिल्ला बात करूँ, यहाँ जागसेर छू या और ला हमारे मंदिर छिन, यहाँ लगातार पर्यटक उन लाग रही। उसी हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करूँ तो वीक ले पड़ाव हमारे उत्तराखंड में छू, और छोटा कैलाश अकलेजी तमाम जो धार्मिक लोग छिन, जो यात्री छिन, जिनको यहाँ पर्यटन जगह मोह छू, वो लोग वहाँ यात्रा करनी। और येल हमार जो पहाड़ छू, हमार पहाड़क रोजगार जसमील बात करी, वीक ठुल अवसर यो पैद करने लाग रही। और हमूल देखो कोरोना काला बाद कई युवा जो बिहार नहगा छी, वो लोग वापस पहाड़ आई, वो प्रवासी नु रिवर्स पलायन करो और यहाँ उन्होंने रोजगारक नई मौक तलाशी। कई लोगों ने यहाँ होटल खोल हली, कई लोग यहाँ दूधा कारोबार करने लाग रही, कई लोग यहाँ सिसुण दगा या भंगाव दगा अपो नई नई चीज़ बड़े भेर बाजार में बेचने लाग रही। तो उन्होंने वो मौका फायदा उठा और अपन पहाड़ में रोजगारक नई अवसर पैद करी। तो जो हमारे पहाड़ छू या कोई देवभूमि यश के नहीं कही जान, बस हम लोगों को देवभूमि में जो हम रोनू वीक हम लोगों को सही उपयोग करना होना चाहें, हम लोगों को वीक सही इस्तेमाल करना होना चाहें। जब हम अपो देवभूमि महत्व को समझुल, यहाँ हम खेत पाड़ को समझुल, यहाँ रोजगार को समझुल, तो यह संभव छू कि जो हमारे यहाँ जो पलायन छू वो बहुत कम है जल, और हम देवभूमि में रहभेर या आनंद पूर्वक अपू जीवन व्यतीत करुल। तो बातचीत यति का रुकना है, अखिल आपको सुनने सुंदर कुमाऊनी गीत, कलाकार छिन शांति शाह।

0: श्रोताओं अल्लापुल कुमाऊं ने गीत सुना, कलाकार छी शांति शाह।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: श्रोताओं कार्यक्रम में अखिल हम आपको सुनने हैं गढ़वाल गीत, कलाकार छ रेखा उनियाल।

रेखा उनियाला गाई यही गीत देगा हमारे आजक उत्तरायण कार्यक्रम लेकर संपन्न हूँ। भूलो माँ उपलब्ध है फिर भेंट हल उमी हल रोजगाचार्य दुचार बातचीत दगड़ में गीत एल आज्ञा दियो नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। श्रद्धालुओं से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की खरीद करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने नैनीताल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टिहरी जिले में काणाताल के पास प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेज न होने पर सरकारी खाद्यान्न से भरे दो वाहनों को सीज किया। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी सुलह समझौते के आधार पर कई वादों का निस्तारण। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से।

0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। राज्यपाल ने धामों में यात्रा व्यवस्थाओं, विकास कार्यों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने धामों में की गई यात्रा व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए जिला प्रशासन की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है और शासन प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं की खरीद करने का आग्रह भी किया।
1: मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, इस धाम के जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर पूरे पुजारी गण को, मैं पूरे अधिकारी गण को शाबाश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप संचालन करते हैं, यहाँ पर जिस तरीके के साथ में संचालन किया जा रहा है, माय बिग कॉम्प्लीमेंट। मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे अत्यंत खुशी हुई है कि हमारे प्रोजेक्ट और चार धाम की इस यात्रा का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है हर एक तीर्थालु को कि आप हमारे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट है, आप हमको सेवा करने का अवसर दीजिए।
0: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज नैनीताल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एक चिकित्सक के अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के लिए निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित निगरानी की जाएगी ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रदेश में गत 27 वर्षों से निरंतर संचालित हो रही विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस साल भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रदेश भ्रमण पर है। हरिद्वार से शुरू हुई इस यात्रा के आज टिहरी जिले में पहुंचने पर अंजनी सैन, रोडधार और मलेथा सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नेथानी ने कहा कि डोली यात्रा के माध्यम से न केवल धार्मिक चेतना को जागृत किया जा रहा है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के अलावा पर्यटन और स्वरोजगार की संभावनाओं को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस समय 27वें वर्ष में उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली है और ये हरिद्वार से चली है और पूरे 10,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 25 तारीख मई को जो गंगा दशहरा है इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में शांति कायम, दूसरा उद्देश्य है जो हमारी देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में हजार ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो उन हजार शक्तिपीठों को धाम का स्वरूप मिले। और दूसरा उद्देश्य ये है इसका कि जो हमारा पलायन हो गया है उस पलायन को रोकने के लिए हमारा बंजर खेतों को आबाद करने का संकल्प है।
0: देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज कलेक्ट्रेट स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC कार्यालय के नवीनीकृत परिसर का उद्घाटन किया। कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप बनाया गया है जिससे कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित, तकनीकी सक्षम और प्रभावी बन सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि NIC शासन और प्रशासन की डिजिटल व्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यालय के सुदृढ़ीकरण से ई गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल और सुचारू संचालन में ये व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: टिहरी जिले में आज चंबा धनौल्टी मोटर मार्ग पर काणाताल के पास प्रशासन ने सरकारी खाद्यान्न से भरे दो वाहनों को सीज कर दिया। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में क्षेत्र में चल रहे वाहनों के औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित दो वाहनों की जांच की गई। इनमें गेहूं और चावल लदा हुआ था जिसे सरकारी राशन वितरण के लिए ले जाया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान वाहन चालकों और संबंधित कर्मियों से राशन के गंतव्य वितरण क्षेत्र और संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगने पर मौके पर आवश्यक दस्तावेज मौजूद नहीं थे। इसके बाद दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित कार्मिकों और ठेकेदार के खिलाफ विस्तृत जाँच कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में समझौता योग्य मामलों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की गई। चंपावत जिले में आयोजित लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर विभिन्न वादों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों के बाहर विवादों का सुलह समझौते से निपटारा करना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में संपत्ति अधिग्रहण, मोटर वाहन, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों का व्यापक और प्रभावी ढंग से समाधान किया गया।
4: ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम जो इसको करते हैं और ये पूरे उत्तराखंड में ही किया जा रहा है, सभी जिलों में जितने भी हमारे न्यायालय हैं। विशेष रूप से अगर हम चंपावत की बात करें तो चंपावत मुख्यालय और टनकपुर बाह्य न्यायालय जो है वहाँ दोनों जगह आयोजित हो रहा है। मुख्य रूप से जो इसमें हमारे शमनीय मामले होते हैं, MACT के मामले होते हैं, चेक के मामले होते हैं, मोटर वाहन के मामले होते हैं, लोगों के विद्युत बिल के मामले हैं, पानी से संबंधित मामले हैं, सभी का मौके पर निस्तारित हो रहा है। और हमने इस बार विशेष रूप से UPCL, जल निगम सभी की ओर से अधीक्षण बुलाए गए हैं। और मैं ये भी आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जिन लोगों के भी बिजली पानी के बिल हैं वो लोग भविष्य में भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। अगली लोक अदालत हमारी सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी।
0: ऊधम सिंह नगर जिले के सभी न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम और पारिवारिक मामलों सहित बैंकों से लिए गए ऋण के मामले सुलझाए गए। अग्रणी जिला प्रबंधक चिराग पटेल ने बताया कि लोक अदालत में कई लंबित मामलों का निस्तारण किया गया।
5: यहाँ पर आज जो लोक अदालत आयोजित की गई है उसमें जो बैंक से सारे उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और जो बैंक के बाकीदार जो भी है बोरोवर्स जो काफी टाइम से लोन भरने में अक्षम रहे थे उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाकर उनका जो भी बैंक में बाकी था उसमें जो भी बैंक की जो गाइडलाइन मतलब स्कीम्स होती है उसमें छूट छाट देके बहुत सारे केसेस का यहाँ पर आज निस्तारण किया गया, जिससे फायदा जो है बाकीदार जो लोग है मतलब बोरोवर्स है बैंक है उनको भी इससे हो रहा है फायदा और बैंक को भी इसमें फायदा हो रहा है कि उनके जो लंबी केसी से बहुत उसका भी निस्तारण हुआ है।
0: चारधाम यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से हरिद्वार जिले में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस टीम विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर वाहनों की जांच कर रही है ताकि यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वाहनों में काली फिल्म लगाने और नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के चालान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। श्रद्धालुओं से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की खरीद करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने नैनीताल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टिहरी जिले में काणाताल के पास प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेज न होने पर सरकारी खाद्यान्न से भरे दो वाहनों को सीज किया और प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह समझौते के आधार पर कई वादों का निस्तारण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना हम आपको सुना रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम की पहली अगली भक्ति रचना हम आपको सुना रहे हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में।

0: चित्रा सिंह की गाई सी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार गढ़वाली में हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटिन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी संजना अवस्थी। पहली मुख्य समाचार, केंद्र सरकार ना लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुप्रीमणि ते अगलू सीडीएस और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ते नौसेना प्रमुख नियुक्त करियाल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करी और देश प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं का वास्ता 1,096 करोड़ रुपयों से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी और टिहरी जिला का पाली गांव ते अखरोट ग्राम का रूप में विकसित किए जालू। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस

0: कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक ने बताई कि किसानों ने अखरोट की विभिन्न प्रजातियों और उर्वरक प्रबंधन की जानकारी दी।
1: कौन सी प्रजाति लगानी है, किस तरह से उसका उर्वरक प्रबंधन करना है, उसके संबंधित जानकारी दी गई थी, वैज्ञानिक जानकारी। साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सघन उर्वरक इसके संबंध में जागरूकता अभियान में, उसमें हमने ये जानकारी दी है कि किसानों को उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारी ज़मीन की उर्वरता क्षमता भी बनी रहे और साथ में हमारी जो खेती की लागत है उसमें कमी आए और हमारा उत्पादन और साथ साथ में आर्थिकी बढ़े।
0: चमोली जिला में स्थानीय किसानों की उपज अब सीधी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी तय भेजी जाएगी। जिला का काश्तकारों की आय बढ़ाने का उद्देश्य सी उत्तराखंड औद्यानिक परिषद और आईटीबीपी का बीच 1 अप्रैल 2026 को स्थानीय काश्तकारों से सब्जी खरीद का वास्ता अनुबंध किए गए। स्थानीय काश्तकार मोहन सिंह कमदी और सुखदेव सिंह ने बोल की प्रदेश सरकार और औद्यानिक परिषद की यह पहल किसानों की आय मजबूत करना सहायक सिद्ध होली। राजधानी देहरादून का गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय स्थित जिला दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र का माध्यम से दिव्यांगजनों ते विभिन्न सुविधाओं को लाभ मिलनो छ। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताई कि केंद्र में अबारी ते 600 से अधिक यूडीआईडी कार्ड बनियाल, ये का अलावा 600 नया दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करियाल, जबकि 250 प्रमाण पत्रों को नवीनीकरण भी हुए।
2: जनपद देहरादून में पहली बार डीएम महोदय के निर्देशों के क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। डीडीआरसी का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। एक वर्ष में जब से हमारा गांधी शताब्दी डीडीआरसी चला है, एक वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 600 नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बने हैं और 250 नवीनीकृत हुए हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र।
0: मौसम विभाग ने राज्य में 13 मई तक बरखा को पूर्वानुमान जारी करी। विभाग के अनुसार अगला 2 दिनों तक पर्वतीय जिलों में कई जगहों में हल्की बरखा होने की संभावना छ, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बन्यो रोलो। वकी 12 मई से प्रदेश का मौसम में बड़ो बदलाव होने को आसार छ। ये दौरान पर्वतीय जिलों में कखी हल्की सी मध्यम त कखी गर्जन का साथ है बरखा हो सकती। मौसम विभाग का निदेशक डॉक्टर सीएस तोमर ने बताई कि पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होने का कारण प्रदेश का अधिकांश जिलों में बरखा आंधी और गर्जन की संभावना बनी छ।
3: हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हमारे को लगभग जो है सारे पर्वतीय जो हमारे जिले वहाँ देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में जो है ये जो है हल्की फुल्की कहीं पे हो सकता है। बाकी फिर 12 और 13 तारीख में जो ऊपर के हमारे 5 नॉर्थ के जो जनपद है वहाँ पे हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिल सकती है 12 और 13 तारीख में। बाकी जगह पे जो है कहीं कहीं देखने को मिल सकती है हल्की मध्यम दर्जे की बारिश और 13 और 14 तारीख को भी लगभग सिमिलर सिचुएशन रहेगी, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ते अगलू सीडीएस और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ते नौसेना प्रमुख नियुक्त करियाल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करी और देश प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं का वास्ता 1,096 करोड़ रुपयों से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी और टिहरी जिला का पाली गांव ते अखरोट ग्राम का रूप में विकसित किए जालू। ये का साथ है गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाणी कार्यक्रम सुनिए सब श्रोताओं के मैं कृष्ण सिंह लटवालक नमस्कार। श्रोताओं के कार्यक्रम का प्रायोजक चयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमारे पर्वतीय क्षेत्र में परंपरागत रूप में कृषि करी जाए और कृषि जो जरूरी संसाधन चन जो कृषि में हम के जरूरत हैं उसे एक तो जो खाद और एक जो सिंचाई और धीरे धीरे के नए बखत वैज्ञानिक प्रयोगों की तरफ बढ़न लग रहो तो अब खादक स्थान ले उर्वरकू ले लो। तो जब हम उर्वरकों की बात कर लूँ तो हमन के अपन खेतन में उर्वरकों ने संतुलित और सही मात्रा में हमन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि उर्वरक अत्यधिक इस्तेमालक ले बहुत सारे नुकसान छन। तो इसमें हमन के प्रयोग ये करना चाहिए कि हमन के संतुलित मात्रा में और वैज्ञानिक तरीके अगर हम इन्हें इस्तेमाल करूँ तो हमन के ज़्यादा फायदा जो है मिल सकूँ और हमारे फसलक बहुत उत्पादन पाणक जी हम उनके बहुत ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता न होनी बल्कि उन्हें सही मात्रा में और सही वक्त में प्रयोग करण फसल उत्पादन के लाभकारी बढ़े दू। कई बार हम लोग भल उपजक लालच में उर्वरकों का अंधाधुन प्रयोग करण लग जानूँ जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हूँ। तो इसमें हम उनके जब हम उर्वरकों की बात करूँ तो प्रमुख रूप में नाइट्रोजन जो हम डालूँ तो जो पौधों के नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वह एक वृद्धि के आरंभ में कम और वृद्धि के बखत में ज़्यादा हैं। तो वृद्धि काल और परिपक्वता के बखत में यह एक बीच में यह कम है। तो इसमें नाइट्रोजन के हमन के उर्वरक कुछ मात्रा बुआई के समय में और शेष मात्रा हमन के वृद्धि काल में हमन के दिन चैन जो फसल चार बल फिर पाँच महीने में पके उनके नाइट्रोजन की कुल मात्रा दीवार में जो कि नौ से बारह महीने में पके उनमें तीन बे चार बार में और जो यह भी ज़्यादा समय खेत में ठाड़े जिसके गन्ने छू और अन्य जो फसल छे तो उनमें नाइट्रोजन की कुल मात्रा जो है चार बे पाँच बार हमन के दिन चैन। रेतीली मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा के कई बार दिन जो छे आवश्यक है जा। तो और दोहर उर्वरक छे फास्फोरस तो पौधों में फास्फोरस की आवश्यकता प्रारंभ में तो जड़ों की वृद्धि के लिए ही जब पौधों के अपन शुष्क भारक एक तिहाई हिस्से तैयार कर लेने तो वक़्त में फास्फोरस की कुल आवश्यकता द्वितीय भाग मड में ग्रहण करने। तो इसमें हमन की फास्फोरस की कुल मात्रा जो है फसल बुआई के वक़्त में खेत में हमन के दिन चैन यह के दख रहे पोटासक अगर हम बात करूँ तो यदि मृदा में उपलब्ध अवस्था में छू तो हमन के फसल वृद्धि है उ वक़्त में यह उ ग्रहण करनी। तो उपलब्ध पोटास के फसल आवश्यकता भी ज़्यादा ग्रहण कर लेनी तो अधिक मात्रा में जो पौधों द्वारा ग्रहण कीजिए वो पौधों में हमन के वृद्धि नहीं हो। तो इसमें पोटास के लिए हमन के खेत में फसलों बुआई वक़्त में हमन के दिन चैन। और अगर हम जैविक खादन की बात करूँ तो कंपोस्ट और गोबर खाद ले फसल बेण में एक महत्वपूर्ण हमन के खेत में डालन चैन। यह खादों के इसलिए पहले हम खेतों में डाल लूँ ताकि फसल अंकुरण के वक़्त में यह खादों में उपस्थित पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित है जो और जो हमारे जो सूक्ष्म तत्व छन जिसके लोहा तांबा जस्ता आदि के हम पहले भी ज्ञात छो हमन के तो क्योंकि माटू में इन्हें तत्व कमी है तो बुआई वक़्त में खेत में हमन के डालन चाहिए या फिर खेत में जिसके फसलों कोई तत्व विशेषक कमी के लक्षण हमन के दिखाई दू तो तत्वों का हमन के खेत में छिड़कन चाहिए। तो इसमें खादक मात्रा के निर्धारित करने के लिए अलग अलग चक्र हूँ। यदि हम फसल चक्र में यदि हम हरी खाद उगुण लग रो तो जो दलहनी फसल उगुण लग रो तो यह के लिए हम उनके फसलों में नाइट्रोजनक खादों कम आवश्यकता है और अगर हम अलग अलग फसलों पोषक तत्व संबंधी आवश्यकता की बात करें तो यह फिर अलग अलग हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम दलहनी फसलों में नाइट्रोजनक आवश्यकता गेहूँ या फिर गन्नक फसल की तुलना में कम है तो इसमें हमारे किसान भाई बहनों उनके वैज्ञानिक तरीके उर्वरकों का प्रयोग करन न केवल हमारे पैदावार के बढ़ूँ बल्कि माटक स्वास्थ्य के लिए बढ़ाई रखूँ और जो खेत में लागत छे उकले कम करूँ।

अगर हम यज्ञ जी एक सिद्धांत तक प्रयोग करो कि सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय और सही स्थान का हम पालन करूँ, तो हम उनके फल फैज जो है इनमें हल। तो हम जो तो ची बातचीत वो रुकू कसिक प्रयोग हम उनके करण चैन और कार्यक्रम में अब अखिल आपको के सुनूँ शंकर प्रीति गई युग कुमाऊनी लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनो, पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट और खेती की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया दगे यो भेंट वार्ता। इन्हर दगे भेंट करने लग रही प्रमोद कुमार पांडे।
4: श्रोताओं, आज हम एक ऐसे फल की बात कर रहे हैं जो दिखने में जितना आकर्षक है सेहत के लिए भी उतना फायदेमंद। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की। श्रोताओं, ड्रैगन फ्रूट की खेती अब भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में और अब उत्तराखंड के मैदानी व गर्म घाटी वाले पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती की संभावनाएं तलाशी जा रही है। तो श्रोताओं, इसी क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ के फार्म मैनेजर डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया जी को आमंत्रित किया हुआ है। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे हम करें, इसके पर्वतीय क्षेत्रों में क्या क्या इसकी संभावना है इस बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में।
5: नमस्कार एवं धन्यवाद।
4: डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ड्रैगन फ्रूट है क्या और यह किस तरह से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
5: ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस प्रजाति का फल है जिसे पिताया, स्ट्रॉबेरी पियर और क्वीन ऑफ द नाइट के नाम से भी जाना जाता है।
4: जी,
5: गुजरात सरकार ने इस फल को कमलम नाम दिया है क्योंकि इसका फल देखने में कमल के फूल जैसा दिखाई देता है। इसके फल का बाहरी रंग लाल या हल्का पीला होता है और अंदर का गूदा सफेद, लाल और गुलाबी रंग का होता है। इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। फल का स्वाद हल्का मीठा होता है।
4: जी,
5: ड्रैगन फ्रूट में विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। यह कम्युनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह उपयोगी।
4: जी डॉक्टर साहब, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की क्या संभावना है?
5: बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड में ड्रैगन फ्रूट की खेती एक उच्च लाभ वाली आधुनिक खेती है, खासकर अगर आप सही तकनीकी अपनाते हैं। यह कम पानी में अच्छी पैदावार देती है व एक बार लगाने के बाद 15 से 20 साल तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। इसमें रोग और कीट भी कम लगते हैं। अच्छे मार्केट रेट की वजह से किसानों के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती अधिक आय का बढ़िया विकल्प बन रही है।
4: जी डॉक्टर साहब, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु एवं भूमि की आवश्यकता पड़ती है?
5: उत्तराखंड के गर्म घाटी वाले पर्वतीय क्षेत्र जहां पर तापमान शीत ऋतु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना हो और गर्मियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना हो, इसके साथ ही अच्छे जल निकास वाली रेतीली दोमट भूमि जिनका पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य हो और ऐसे क्षेत्र जहां पर पाला ना पड़ता हो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं।
4: जी डॉक्टर साहब, इसकी जो प्रजातियां हैं उन्नत जो विकसित की गई हैं वो कौन कौन सी है?
5: हाँ, फल के आंतरिक रंग के आधार पर ड्रैगन फ्रूट की 3 प्रजातियां हैं जिनमें रेड फ्लश ड्रैगन फ्रूट, व्हाइट फ्लश ड्रैगन फ्रूट और पिंक फ्लश ड्रैगन फ्रूट। जिनकी प्रमुख प्रजातियां रेड ड्रैगन, अमेरिकन ब्यूटी, वियतनाम वाइट और ताइवान पिंक है। इसके अतिरिक्त एक पीला ड्रैगन फ्रूट भी आता है जो बाहर से दिखने में पीला होता है लेकिन उसका जो गूदा होता है वो अंदर से सफेद होता है।
4: जी डॉक्टर साहब, ड्रैगन फ्रूट के पौधे का प्रसारण किस प्रकार से होता है और पौध तैयार करने में कौन सी विधि सर्वोत्तम है?
5: ड्रैगन फ्रूट को बीज और कलम दोनों विधि से लगाया जा सकता है। बीज से लगाने पर यह फल देने में ज्यादा समय लेता है जो कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।
4: जी,
5: जबकि कलम यानी कि कटिंग विधि द्वारा इसमें अधिक सफलता प्राप्त की जाती है। तो ड्रैगन फ्रूट की पौधों को कटिंग के माध्यम से ही लगाना चाहिए।
4: डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि हमने ड्रैगन फ्रूट हम लगाना चाह रहे हैं, हमारे किसान जो हैं वो इसकी खेती भी करना चाह रहे हैं, लेकिन बात आती है कि इसकी पौध कहाँ से लें, तो कहाँ से लें इसकी पौध?
5: बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया हुआ है। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में और राज्य के उद्यान नर्सरियों और राज्य की प्राइवेट नर्सरियों से इसके पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य के जिले में विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विभिन्न किसान जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं उनसे भी ये पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ में भी हम ड्रैगन फ्रूट के पौधे तैयार कर रहे हैं, आप वहां से भी इसके पौधे प्राप्त कर सकते हैं।
4: डॉक्टर साहब कितने का मिल जाएगा पौधा, एक पौधा?
5: हाँ, एक पौधे की कीमत जो है 70 से 80 रुपए के मध्य होती है
4: जी। और तैयार होने में कितना समय लगता है?
5: जी के ड्रैगन फ्रूट के तैयार होने में 1 से 1.5 साल का समय
4: जी, यानी कि 1 से 1.5 साल में ये पौधा
5: तैयार
4: फल देगा जी। तो डॉक्टर साहब अब बात आती है ड्रैगन फ्रूट को लगाने का समय सबसे बढ़िया कौन सा रहता है?
5: ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए खेत को अच्छी तरह जुताई करके समतल बना लेना चाहिए। लेआउट करके अधिक उत्पादन के लिए पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 2 मीटर रखते हैं
4: जी।
5: पौधा लगाने के लिए 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा बनाना चाहिए। पौधे लगाने से पहले खेत में पौधों को सहारा देने के लिए लोहे या सीमेंट के खंभे जो 6 से 8 फीट ऊंचाई वाले हो लगा देना चाहिए
4: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कृपया ये भी बताइए कि पौध लगाते समय हमें कौन सी खाद एवं उर्वरक को कब कब देने चाहिए?
5: अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रत्येक पौधे को 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद देनी चाहिए। इसके अलावा लगभग 250 ग्राम नीम की खली और 5 से 7 ग्राम बविस्टिन प्रत्येक गड्ढे में अच्छी तरह मिला देने से पौधों में मृदा जनित रोगों रोग व कीट नहीं लगते हैं
4: जी। डॉक्टर तो सर एक नाली क्षेत्रफल में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं?
5: हाँ, एक नाली क्षेत्रफल में 50 से लेकर 200 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पौधों को सहारा देने के लिए सीमेंट या लोहे के खंभे के पास कितने पौधे प्रतिरोपित करते हैं। यदि एक खंभे के पास एक पौधा लगाते हैं तो 50 पौधे लगाए जा सकते हैं। एक खंभे के पास अगर 2 पौधे लगाते हैं तो 100 पौधे लगाए जाते हैं। यदि एक खंभे के पास 3 पौधे लगाते हैं तो 150 पौधे और एक खंभे के पास 4 पौधे लगाते हैं तो 200 पौधे तक लगाए जा सकते हैं
4: जी। ऐसा अब बात करते हैं सिंचाई की, तो ड्रैगन फ्रूट को कब कब सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है?
5: इसमें सिंचाई की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वे पौध रोपण के तुरंत बाद, फूल आने पर और फल विकास के समय तथा गर्म व शुष्क मौसम में बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए ड्रिप सिंचाई सबसे बेहतर विकल्प है। गर्मी के दिनों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की जड़ों के पास पानी इकट्ठा ना होने पाए, अर्थात जल निकास की समुचित व्यवस्था खेत में होनी चाहिए
4: जी। अब बात करते हैं कि ड्रैगन फ्रूट के पौधों की कटाई छटाई की, तो कब कब करनी चाहिए?
5: ड्रैगन फ्रूट में पौधों की कटाई छटाई करना आवश्यक होता है। पहले तो पौधों की सीधी वृद्धि और विकास के लिए जो अपरिपक्व पादप के तने होते हैं, पौधे के जो तने होते हैं उनको इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ाने के लिए पौधों की कटाई छटाई करनी होती है
4: जी। ऐसा यो कैसे पता चलेगा कि फल तोड़ने का सही समय अब आ गया है करके?
5: देखिए, जब हमारा जो फल है 1 से 1.5 साल के बाद आना शुरू हो जाता है तो उस समय जो जब फल मैच्योर अवस्था में आता है, परिपक्व अवस्था में आता है, उस समय वो फल का रंग हरे रंग का होता है
4: जी।
5: और जैसे ही फल का रंग लाल रंग में परिवर्तित होने लगे बाहर से, वही सही समय है। तो फल के पकने रंग परिवर्तन होने के 3 से 4 दिनों बाद इसको तोड़ लिया जाता है। यदि आपका बाजार दूर है तो इसका जैसे ही रंग परिवर्तित होता है तो 1 दिन के अंदर ही अंदर इस फल को तोड़कर बाजार में बेच देना चाहिए
4: जी। दरअसल ड्रैगन फ्रूट के पौधों पर कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं, वो इनका निदान कैसे करना चाहिए?
5: सामान्यतः ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज रोग व थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज रोग के नियंत्रण के लिए बेनकोजेब दवा 0.25% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और थ्रिप्स के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए
4: जी। ऐसा अब बात आती है कि हम एक नाली क्षेत्रफल में कितनी उपज हम इसकी कर पाते हैं, वो किसानों को कितनी आय प्राप्त हो सकती है?
5: ड्रैगन फ्रूट की उपज पौधों की संख्या, पौधों की किस्म, पौधों की देखभाल और पौधों की उम्र पर निर्भर करती है। पहले साल में ड्रैगन फ्रूट लगाने की शुरुआती लागत 25 से 30 हजार प्रति नाली आती है। दूसरे साल से ही अच्छा उत्पादन मिलने लगता है। ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी मांग है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। किसान अपनी सुविधा अनुसार अपना उत्पाद थोक या फुटकर विक्रेता को बेचकर लाभ कमा सकते हैं
4: जी।
5: 3 साल बाद एक परिपक्व पौधे से 10 से 15 किलोग्राम फल प्राप्त हो जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट का पौधा एक सीजन में 3 से 4 बार फल देता है। प्रत्येक फल का वजन 300 से 600 ग्राम तक होता है। एक पौधे पे 50 से 60 फल लगते हैं। इस प्रकार एक नाली क्षेत्रफल से 2500 से 3000 तक फल प्राप्त हो जाते हैं, या कहें 500 से 750 किलोग्राम फल प्राप्त हो जाते हैं। अगर सही तरह से देखभाल की जाए तो किसान को एक नाली क्षेत्रफल से औसतन 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की आय कर सकते हैं।
4: जी, ने ड्रैगन फ्रूट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दी, अब अंत में आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को और क्या कहना चाहेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में?
5: देखिए, ड्रैगन फ्रूट की खेती एक आधुनिक, लाभदायक और कम जोखिम वाली खेती है। अगर आप पारंपरिक खेती से कुछ नया करना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की खेती एक लाभदायक विकल्प बनकर उभर रही है। यदि आप नई खेती की तलाश में हैं तो इसे जरूर अपनाएं।
4: और साहब, एक चलते चलते एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ लेता हूँ कि जो जंगली जानवर है, खासकर बंदर, वो कितना नुकसान पहुँचा?
5: हाँ, इसमें अभी बंदर के द्वारा इसमें अभी नुकसान नहीं देखा गया है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बंदरों के समस्या है तो उन वे क्षेत्र भी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए एक अच्छा विकल्प।
4: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब आपने हमें ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे और अच्छा लाभ कमाएंगे। आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्रोताओं, अल्लाह आपको सुनो, पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावना विषय पर डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया दगे भेंटवार्ता इन दगे भेंट करने लग रहा छी प्रमोद कुमार पांडे। आपको सब जान सके कि हम आपूल जी हर रोज कार्यक्रम में कृषि सलाह ले भेड़ू, तो आजक कृषि सलाह हमार तरफ में हमार किसान बंधुन के रोल कि जो किसान भाई बहनी बैगन, शिमला मिर्च और टमाटरक पौधन लग रही, तो हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए उनके मल्चिंग सीटक प्रयोग जो है अवश्य करना चाहिए। यल एक तो खरपतवार नियंत्रण बढ़िया तरीका हूँ, संतुलित तरीका हूँ, और दोहर जो पोषक तत्व होनी वो पौधन के बढ़िया तरीका मिलनी और यह उत्पादन ले भल हूँ। तो यह कहते कार्यक्रम में अब अखिल आपू के सुनू नंदलाल आर्या गई यो कुमाऊनी लोकगीत।
6: हंसा चकोरा आय, ओ हंसा चकोरा किल भेटे बटमा को भोला रोपी को तेरी लटिमा, को भोला रोपी को तेरी लटिमा, ओ हंसा चकोरा आय, ओ हंसा

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार कुमाऊनी में हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़, मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगिल सीडीएस और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त करिहाल। राज्यपाल गुरमीत सिंगल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूज अर्चना कर देश प्रदेशक समृद्धि और खुशहाली कामना करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में अलग अलग विकास योजनाओं के लिए 1,096 करोड़ रुपए से ज्यादा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करो और टिहरी जिला पाली गांव को अखरोट ग्रामक रूप में विकसित करी जल। अब समाचार विस्तारल। केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट एनएस राजा सुब्रमणि को अगिल रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त करी हाल। ऊ जनरल अनिल चौहानक जागल्याल जनर कार्यकाल 30 मई को पूर्ण होने। लेफ्टिनेंट जनरल ई वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकारक रूप में कार्यरत छी। इससे पहले उन्हें उप प्रमुख केंद्रीय कमानक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफक रूप में काम करी। सरकारल वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के नौसेना प्रमुख नियुक्त करी हालो। रक्षा मंत्रालय बता कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन आजकल पश्चिमी नौसेना कमानक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफक पद में काम करना छी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जाग लेला जो 31 मई को सेवानिवृत्त होना छिन। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगालक मुख्यमंत्री पदक शपथ ली। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी छू। भाजपा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर वे तृणमूल कांग्रेस 15 वर्षों के शासनक अंत करी हालो। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर एन रवील श्री अधिकारी के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले पश्चिम बंगाल या नवनिर्वाचित सरकारक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भई। सोशल मीडिया में जारी संदेश में प्रधानमंत्री कौ कि श्री अधिकारी जनता से गहराई से जुड़ी रही और उनर आकांक्षाओं के समझण वाल जननेता के रूप में अपूर्ण पहचान बनाई। मुख्यमंत्री धामिल विश्वास जताई कि श्री अधिकारी के नेतृत्व और दूरदर्शिता पश्चिम बंगाल के प्रगति सुरक्षा और विकासक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाल। राज्यपाल गुरमीत सिंगल आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूज अर्चना कर वीर देश और प्रदेशक सुख समृद्धि और खुशहाली कामना करी। यह बीच उन्होंने मंदिर परिसर में तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी ले ली। बद्रीनाथ घूमण के दौरान राज्यपाल मुख्य विकास अधिकारी थे। धाम में संचालित मास्टर प्लान कामों की जानकारी ले उन्होंने नदी किनार और मंदिर परिसर में करे जाने वाले निर्माण और विकास कामों का निरीक्षण ले करो। दगड़ ही धाम से जुड़ी अलग अलग हितधारकों से मुलाकात कर उनर सुझाव सुनी और जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दे। द्वीय धामों की यात्रा के दौरान राज्यपाल श्रद्धालुओं थे भक्तिभाव और अनुशासनक दगड़ दर्शन करण और यात्रा व्यवस्थाओं में सहयोग करणक अपील करी। उन्होंने चार धाम यात्रा में उणीवाल तीर्थ यात्रियों से स्थानीय सामानों

0: यात्राक यादक रूप में खरीदण को लेको एक अलावा उन धामों में स्वच्छता बढ़ाए रखने का अनुरोध ले करो।
1: हम तो पूरा साल इंतजार करते हैं कि चार धाम यात्रा शुरू होगी, पूरे साल मेहनत करते हैं ताकि एक दिव्यता से, भव्यता से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका संचालन। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि यहाँ पर लेट्स कीप दिस एरिया क्लीन, क्योंकि प्रभु वहीं बसता है जहाँ पर सफाई और सुंदरता होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं बहुत सुंदर तरीके से बढ़ रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट का मकसद है कि किस प्रकार से ये यात्रा सफल हो और प्रभु का आशीर्वाद मिले।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्यक अलग अलग विकास योजनाओं और कुंभ मेल 2027 है जुड़ी कामों के लिए 1,096 करोड़ रुपए से ज्यादा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी छू। स्वीकृति योजनाओं में पू और पार्किंग निर्माण, शहरी निकायों और पंचायती संस्थाओं के धनराशि जारीकरण, दगड़ ही अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों कर्मिकों के वेतन भुगतान है जुड़ी कामों को ले शामिल करी छू। एक अलावा हरिद्वार में सड़क नवीनीकरण, जंक्शन सुधार और सौंदर्यकरण का दगड़ ही सड़क सफाई मशीनक आपूर्ति संबंधी कामों को ले मंजूरी दी है।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: टिहरी जिलाक जाखणीधार विकासखंड स्थित पालीगों को अखरोट ग्रामक रूप में विकसित करी जाल। टिहरी विधायक किशोर उपाध्यायल मैसों द्वारा बंजर खेतों में लगाई गई अखोड़क पौध और विकसित करी गई बगीचों को गांव वालों को दृढ़ घोषणा करी। यह मौक में उन्होंने कहा कि यह कोशिश मैसों को बंजर होने वाल जमीन को दोबारा बागवानी और खेती कामों में उपयोग करने के लिए प्रेरित करूँ। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आलोकल बता कि किसानों को अखोड़क अलग अलग प्रजातियों और उर्वरक प्रबंधक की जानकारी ले दी गई छू।
3: की कौन सी प्रजाति लगानी है, किस तरह से उसका उर्वरक प्रबंधन करना है, उसके संबंधित जानकारी दी गई थी, वैज्ञानिक जानकारी। साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सघन उर्वरक इसके संबंध में जागरूकता अभियान में उसमें हमने ये जानकारी दी है कि किसानों को उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारी ज़मीन की उर्वरता क्षमता भी बनी रहे और साथ में हमारी जो खेती की लागत है उसमें कमी आए और हमारा उत्पादन और साथ साथ में आर्थिकी बढ़े।
0: चमोई जिला में स्थानीय किसानों की उपज अब सिद्ध भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के भेजी जाए। जिला काश्तकारों का आय बढ़ुणक वेल उत्तराखंड औद्योगिक परिषद और ITBP के बीच 1 अप्रैल 2026 स्थानीय बटी काश्तकारों थे सब्जी खरीदक लीजिए अनुबंध करी गई। स्थानीय काश्तकार मोहन सिंह कमदी और सुखदेव सिंहक बोलन छू की प्रदेश सरकार और औद्योगिक परिषदक यह पहल किसानों को आय मजबूत करण में सहायक सिद्ध होल। राजधानी देहरादूनक गांधी शताब्दी जिला अस्पताल स्थित जिला दिव्यांग और पुनर्वास केंद्रक माध्यम दिव्यांगजनों के अलग अलग सुविधाओं के लाभ मिलण। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिलड़ियाल बता कि केंद्र में अब तक 600 से ज्यादा UDIED कार्ड बने हैं। यह अलावा 600 नई दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी की गई छिन, जबकि 250 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण ले करी गई छू।
4: जनपद देहरादून में पहली बार DM मोदी के निर्देशों के क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। DDRC का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। एक वर्ष में जब से हमारा गांधी शताब्दी DDRC चला है, एक वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 600 नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड बने हैं और 250 नवीनीकृत हुए हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र।
0: मौसम विभाग राज्य में 13 मई तक बरखाक पूर्वानुमान जारी करी छू। विभागक अनुसार अगिल द्वि दिनों तक पहाड़ी जिलों में कैं हल्क द्यो हुणक संभावना छू, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बड़ी रोल। वह 12 मई बटी प्रदेश में मौसम में ठुल बदलावक आसार छिन, या दौरान पर्वत

0: तेजलों में कैकें हल्की से मध्यम दियो गड़गड़ाटक दगड़ है सकल। मौसम विभाग निदेशक डॉक्टर सीएस तोमर अल बता कि पश्चिमी विक्षोभक सक्रिय होने कारण प्रदेश में ज्यादातर जिलों में दियो अंधड़ और गड़गड़ाहटक संभावना बनी छू।
1: हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हमारे को लगभग जो है सारे पर्वतीय जो हमारे जिले वहाँ देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में जो है ये जो है हल्की फुल्की कहीं पे हो सकता है। बाकी फिर 12 और 13 तारीख में जो ऊपर के हमारे 5 नॉर्थ के जो जनपद है वहाँ पे हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिल सकती है 12 और 13 तारीख में। बाकी जगह पे जो है कहीं कहीं देखने को मिल सकती है हल्की मध्यम दर्जे की बारिश। और 13 और 14 तारीख को भी लगभग सिमिलर सिचुएशन रहेगी, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बारी फिर। केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगिल सीडीएस और वाईएस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के नौसेना प्रमुख नियुक्त करी। राज्यपाल गुरमीत सिंगल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूज अर्चना कर प्रदेश और देशक समृद्धि खुशहाली कामना करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य में अलग अलग विकास योजनाओं के लिए 1,096 करोड़ डबलों से ज्यादा वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर और टिहरी जिला पाली गांव के अखरोट ग्रामक रूप में विकसित करी जल। एक दगड़ ही कुमावनी में प्रादेशिक समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
2: FM 16.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं राज थ्री फिल्म से केके की आवाज़ में। गीत के बोल संजय मासूम के हैं और धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं पैपून की आवाज़ में मद्रास कैफे फिल्म से। अली हयात के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: FM 16.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए कबीर सिंह फिल्म का गीत सचिव टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाज़ में इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सचिव परंपरा ने।

कबीर सिंह फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस।

0: कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बशीर बद्र के कलाम से, फनकार हैं तलत अजीज।
1: दिल को खुशबू की तरह

0: by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में।

जगजीत सिंह की गाई सी गजल के साथ सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और आईएसएल फुटबॉल लीग में जमशेदपुर एफसी और बेंगलोर एफसी के बीच मुकाबला जारी।

0: प्लेऑफ की दौड़ और भी रोमांचक होती जा रही है। इसी दौड़ में बने रहने की उम्मीदों को लिए कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आए कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, जहां केकेआर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराते हुए सीजन में लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 142 रन लगाए। प्रथम निशंका ने सर्वाधिक 50 रन बनाए, जबकि आशुतोष शर्मा ने 39 रन का योगदान दिया। केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने 2-2 विकेट लिए। 143 रन के लक्ष्य को केकेआर ने 14 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। टीम के लिए जीत के हीरो रहे फिन एलन, जिन्होंने 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के बाद कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को नई जान मिली है, जबकि दिल्ली के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: कोलकाता के लिए कल का मुकाबला किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि उसने भी सोचा नहीं होगा कि दिल्ली अपने मैदान पे इतनी आसान जीत उसको दे देगी।
2: देखिए, पूरे टूर्नामेंट में अगर हम दिल्ली के प्रदर्शन को देखें तो पैचेस में किसी मैच में उसके गेंदबाज चलते हैं तो किसी मैच में उसके बल्लेबाज चलते हैं। एक इकाई के रूप में जो प्रदर्शन की बात होती है वो दिल्ली अभी तक कर नहीं पाई है। 200 से ऊपर का स्कोर करके भी मैच हारी है दिल्ली की टीम। और अगर कल के मैच की हम बात करें तो केकेआर की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि ये इतना लंबा टूर्नामेंट है जिसमें सही समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। केकेआर की शुरुआत धीमी रही, लेकिन लगातार 4 मैच जीते हैं टीम ने। और आप देखिए कि उसके जो टॉप ऑर्डर है, उसके जो फिनिशर है, उसके जो बॉलर है, सब जबरदस्त फॉर्म में। कल फिन एलन ने 5 चौके और 10 छक्के, उसमें 1 छक्का 92 मीटर का था। तो जो आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कल उन्होंने किया है, पूरी तरह से दिल्ली के जो गेंदबाज हैं वो दबाव में नजर आए। और यहाँ पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जो आईपीएल से ठीक पहले जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, बिल्कुल निराश किया उन्होंने। उनकी गेंदों में वो दिशा और दशा नजर ही नहीं आ रही थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली को काफी निराशा। और मैच की बात तो अक्षर पटेल ने बोला भी कि अब जो भी होगी प्लानिंग वो अगले सीजन के लिए होगी। मतलब टेक्निकली, मैथमेटिकली भले ही दिल्ली अभी कहीं ना कहीं प्लेऑफ की दौड़ में है, लेकिन अंदर से टीम मैनेजमेंट समझ चुका है कि अब उनके लिए जो है रास्ते बंद हो चुके हैं। और कोलकाता की जीत में फिन एलन ने निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया। कैमरन ग्रीन के साथ जो उनकी साझेदारी थी, शतकीय साझेदारी, वो काफी अच्छी रही। और यहां विशेष तौर पर बात करनी पड़ेगी एक ऐसे खिलाड़ी की जो शुरू से कोलकाता नाइट राइडर का ट्रंप कार्ड रहा है, वो है सुनील नारायण। 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। ऐसे आईपीएल में जिसमें गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी यहां पिट रहे हैं, ऐसे में ये इस तरीके का प्रदर्शन करना, अनुकूल रॉय गेंदबाजी के साथ जो एक कैच उन्होंने लपका था वो भी बहुत जबरदस्त था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि केकेआर जो है वो सही समय पर एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है और यहां से आगे उनकी राह मुझे आसान होती हुई नजर आ रही है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह का कमबैक इस सीजन में केकेआर की तरफ से देखने को मिला, पहले 6 मुकाबलों में 5 हारे, 1 टाई और लगातार 4 जीत, तो टीम एक अच्छी पटरी पर है। वहीं दिल्ली के लिए मुश्किल ये भी होगी कि आने वाले 3 मैचों में पंजाब, राजस्थान और एक बार फिर कलकत्ता की टीम सामने होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भी भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। 8 भारतीय मुक्केबाज अंडर 15 में आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंच गए। ये खिलाड़ी अब फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि 5 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि ताशकंद में भारतीय मुक्केबाज अपने हर मुक्के के साथ एक नए पदक की आस भारत को दिलाते हुए।
2: और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है ना कि अंडर 15 और अंडर 17 आयु वर्ग के चैंपियनशिप है, और यहाँ से जो निकलेंगे उनके लिए आगे जो बहुराष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट होते हैं, जैसे एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है या ओलंपिक है, उनके लिए यहाँ पदक जीतने वालों का मनोबल बढ़ेगा। और जो भारत का पूल तैयार होगा, जैसे हम अगले ओलंपिक लॉस एंजलिस के बाद ब्रिस्बेन, या जो हम खुद आकांक्षा कर रहे हैं कि भारत में 2036 ओलंपिक हो, तो उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी अच्छा यहां से एक्सपोजर मिलेगा इन खिलाड़ियों को, जिनमें से भविष्य के लिए पूल तैयार होगा।
1: जी बिल्कुल, भविष्य के लिए पूल तैयार होंगे और ये मेडल इन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अच्छा प्रदर्शन करने का और प्रोत्साहन लेकर के साथ आएंगे। और अब मुक्केबाजी के बाद रुख करते हैं तीरंदाजी का, जहां चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक

0: आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11 ओवर में एक विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए मुना तो राजस्थान चौथे स्थान पर है और पांचवें नंबर पर गुजरात की टीम है। आज जो जीतेगी उसके लिए ये मैच एक लॉटरी से कम नहीं होगा।
1: बिल्कुल लॉटरी से कम नहीं होगा कि आप अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर है, 11 मैचों में 14 अंक है और इन दोनों टीमों के 12-12 अंक है। तो जो भी टीम जीतती है उसके पास दूसरे या हो सकता है पहले स्थान पर भी जाने का एक सुनहरा मौका हो।
0: जी बिल्कुल, एक सुनहरा मौका कि आप दूसरे स्थान पर तो कम से कम जाएंगे और अगर अच्छे अंतर से जीतते हैं तो पहला स्थान भी आपका इंतजार कर रहा है। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट।
2: जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है प्ले

0: जीता। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबे को 147-144 से हराया। एक रिपोर्ट।
1: महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज साहिल जाधव ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147-144 से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक हासिल किया। ये विश्व कप में उनका पहला व्यक्तिगत पदक भी है। जाधव पहले सेट के बाद एक अंक से पीछे चल रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे सेट में परफेक्ट 30 का स्कोर बनाया, जबकि डेम्सबो 27 का स्कोर ही बना पाए। इससे जाधव को कुल 59-57 की बढ़त हासिल करने में मदद मिली और अपने अंतिम 9 तीरों में से केवल 2 अंक गवाकर 3 अंक की यादगार जीत हासिल की। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें फ्रांस के मौजूदा विश्व चैंपियन निकोलस गिरार्ड से 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने इस पदक के साथ कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का भी समापन किया। भारत अब कल प्रतियोगिता के समापन दिवस पर रिकवर स्पर्धा में 2 और पदक जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय महिला टीम स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कास्ट।
0: जो पदक भारत ने आज के लिए जीता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नजर कल होगी जहां पे स्वर्ण पदक के लिए वो भारतीय टीम जो कोरिया को हरा करके पहुंची है, 10 बार की चैंपियन कोरिया टीम को कल चीन सामने होगा, कितना दबाव होगा।
2: देखिए, सबसे पहले तो आज जो साहिल ने किया है उसकी बात करते हैं कि कंपाउंड में पिछली बार भारत को 5 पदक मिले थे और इस बार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो इसको एक कॉन्सोलेशन कह सकते हैं कि, और वो भी साहिल जैसे युवा खिलाड़ी जिसके लिए ये दूसरा ही करियर का बड़ा पदक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीत चुके हैं और सामने बहुत ही अनुभवी तीरंदाज थे, पहले सेट में पिछड़ भी गए थे, उसके बाद भी जो शूटिंग और आर्चरी है नर्व्स का खेल होता है, एक सांस से बदल जाता है मुकाबला, तो वहां पर उसको कंपोजर बनाए रखते हुए उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और अगर हम कल की बात करें रिकर्व में महिला टीम की, तो दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद जैसी युवा खिलाड़ी हैं, अनुभव और युवा खिलाड़ी का अच्छा तालमेल है। साउथ कोरिया को हराया है 10 बार की चैंपियन, मनोबल काफी बड़ा होगा और बड़े मुकाबलों में खेलने का काफी अनुभव दीपिका के पास है, अंकिता के पास है, तो मुझे लगता है कि ये जो चाइना से मुकाबला होने वाला है यहाँ पर वो अनुभव जरूर उनका काम आएगा। और पिछले कुछ अरसों में अगर हम प्रदर्शन को देखें, चाहे वो दीपिका हो चाहे वो अंकिता हो, कहीं ना कहीं एक निराशा होगी कि बड़े टूर्नामेंट में वो पदक जीतने में नाकाम रहे, तो उनके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और व्यक्तिगत वर्ग की अगर हम बात करें, सिमरनजीत, आप देखिए कॉम्पिटिशन का लेवल कि जब क्वालिफिकेशन हो रहा था तो दीपिका से 3 अंक से पीछे रह गई थी सिमरनजीत और टीम स्पर्धा में जगह बनाने में नाकाम रही, तो उनके पास भी अब एशियन गेम्स की पदक विजेता रह चुकी है, तो उनके पास भी एक नया इतिहास लिखने का ये सुनहरा मौका है।
0: जी बिल्कुल, जिस तरह का पहला चरण भारत के लिए रहा था, बहुत अच्छी नतीजे वहां से भारत के लिए नहीं आए थे, तो उम्मीद होगी यहाँ पे कम से कम कुछ पदकों के साथ इस अभियान को समाप्त किया जाए। और बात करते हैं फुटबॉल की। ISL फुटबॉल लीग में जमशेदपुर FC और बेंगलोर FC के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलोर FC ने जमशेदपुर पर 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में गोवा FC ने मोहन बगान FC के भी साथ एक-एक से मुकाबला ड्रॉ खेला। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता सोमवार से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। भारत 44 साल बाद इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने बताया कि गुजरात इस प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे।
3: एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी पूरी है और 102 मेन और 77 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा, एशियन चैंपियनशिप पहली बार हो रही है वो भी गुजरात में। कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होना है उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा भाई चानू को ज्यादा इंजरी नहीं है, थोड़ा सा उसने शोल्डर में पेन महसूस किया था, तो इसलिए कहीं ज्यादा इंजरी ना हो जाए उसको अभी रेस्ट दे दें। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत जरूरी है और एशियन गेम्स में, इसलिए हमने उसको ड्रॉप किया है।
0: इससे कुछ महीने पहले गुजरात ने ही कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, जहां भारतीय खिलाड़ियों का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। यहां पर क्या महत्वाकांक्षाएं होंगी अपने भारोत्तोलन के खिलाड़ियों से भारत को?
2: बिल्कुल होगी, क्योंकि एक वैसे थोड़ा सा सेटबैक है कि मीराबाई चानू इसमें भाग नहीं ले रही है, हालांकि ये राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए कोई जोखिम लेना ठीक नहीं समझा होगा, और वो सही भी है, लेकिन दुनिया भर के काफी नामी गिरामी ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स मेडलिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर होगा और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ये

0: क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी है, तो यहाँ से काफी कोटा स्थान हासिल करने की उम्मीद है। और चूंकि गांधीनगर में हो रहा है और ये वही जगह है जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का अहमदाबाद मेजबान है, और ओलंपिक के लिए भी हम अहमदाबाद ही चुने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वहां किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। और आगे चूंकि ये बहुत ही पैक्ड शेड्यूल है, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है आगे, तो यहां से जितने खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पदक मिलेंगे उतना ही मनोबल उनका बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल, मनोबल के साथ स्ट्रेंथ और फिटनेस मेंटेन रखने की भी परीक्षा कल से शुरू होगी, और देखा जाता है कि भारत के लिए ये प्रतियोगिता किस तरह से गुजरती है। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता में वीर चोटरानी अगले दौर में पहुंच गए हैं। वीर ने कल पुरुषों के पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को 5 गेम तक चले मुकाबले में 14-12, 8-11, 5-11, 11-7 और 11-2 से हराया। चोटरानी कल दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मिस्र के मुस्तफा असल का सामना करेंगे। अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन, वेलावन सेंथिल कुमार बाहर हो गए और अभय भी कल बाहर हो गए थे। और महिला वर्ग में भारत की तरफ से कोई चुनौती इस बार नहीं है इस चैंपियनशिप में अपने अपने कारणों से, तो भारत के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता ना गुजरती हुई अब तक।
0: बिल्कुल, लेकिन वीर चोटरानी का हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो भारत के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे।
1: जी बिल्कुल, अच्छी खबरों की आस होगी। और बात करते हैं नई दिल्ली में चल रही निशानेबाजी प्रतियोगिता की, जहां नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में आज रेलवे और सेना की टीम का दबदबा देखने को मिला। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे ओलंपियन अनीश भानवाला ने आज पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नई दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की टीम स्पर्धा में आर्मी की यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता। तो एक प्रतियोगिता मुख्य रूप से भोपाल में खेली जा रही है, लेकिन कुछ मुकाबले इसके दिल्ली में भी चल रहे हैं, जहां भारतीय निशानेबाज जो लगातार हर टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आता हुआ।
0: बिल्कुल, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज देखिए, अनीश भानवाला वहीं अभ्यास करते हैं और उनके लिए तो बिल्कुल घर जैसा है, और ओलंपियन रह चुके हैं, पदक कई बड़े टूर्नामेंटों में पदक विजेता है, तो उनके लिए चुनौती आसान थी और अपेक्षा के अनुरूप ही कहा जाएगा उनका प्रदर्शन रहा।
1: जी बिल्कुल, और अंत में चलते चलते एक बार स्कोर पे नजर डाल लेते हैं, जहां गुजरात और राजस्थान के बीच मुकाबला जारी है और गुजरात ने इस समय 14 ओवर और 5 गेंद में 2 विकेट खोकर 165 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। मोना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोड़ासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और

0: प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक

0: स्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य

0: और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.

0: क्या करे जब किसी से किसी को प्यार।
1: इंस्पिरेशन बिल्ट इनटू एवरी अराइवल। दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज।
2: मीट द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, द एसयूवी दैट्स बिग ऑन स्टाइल एंड स्मार्ट ऑन वैल्यू। विद इट्स बोल्ड डिजाइन एंड स्पेशियस कंफर्ट, इट्स बिल्ट टू इंप्रेस एवरी सिंगल डे।
1: एंड नाउ इट्स योर्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ जस्ट ₹6.70 lakh।
2: यस, ₹6.70 lakh, वैलिड टिल 31st May। डोंट मिस आउट, विजिट योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम एंड ब्रिंग होम योर फ्रॉन्क्स टुडे।
1: हरी ऑफर्स फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली, टीएनसी अप्लाई।
3: नेक्सा
4: फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद। इंडिवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी और आनंद जी ने।

आप तो ऐसे न थे फिल्म के इस गीत के साथ। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले।

लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था, उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था तो नहीं। बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खांटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता

0: था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो, और बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है। वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहाँ पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले,

0: संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7-8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड
0: एम्बेसडर्स। इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एक जुगवाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त है, अलग अलग देशों के दोस्त है, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
1: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
0: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
0: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
6: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश होती है।
7: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे। तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
8: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है, जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें

0: जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
2: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
3: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
2: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
3: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
2: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
4: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से लेह में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए। हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में, सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
3: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद,
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
3: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
5: भारत में और भारतीय वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन, और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक

0: ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
5: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, रेनाउंड फॉर हिज डिस्टिंक्टिव स्टाइल एंड एक्सेप्शनल टोनल क्वालिटी। His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents Raag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees.